0: that in both countries, cricket is not just a sport. It's a shared passion. But today, there is no pressure of a last over finish. Today is about the joy of sport, the warmth of our friendship, and the energy of future champions. A short while ago, we watched children playing kabaddi, footy, Australian rules football, and cricket. Looking at their enthusiasm, it feels as though this is not an exhibition match, but an audition for future champions. Their confidence and energy make it clear that the future of sports, both in India and Australia, is exceptionally bright.
1: जब भी मुझे मेरे मित्र प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी से मिलने का अवसर मिला है, क्रिकेट हमारा नेचुरल कनेक्टिंग पॉइंट रहा है। अहमदाबाद में हम साथ में स्टेडियम गए थे और आज यहां आकर मैं स्पोर्टिंग स्पिरिट महसूस कर रहा हूं। जब हमारे बीच स्टीव वॉ और लीजा स्थालेकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद हैं, स्टीव वॉ की मेंटल टफनेस और लीजा स्थालेकर की ऑलराउंड एक्सेलेंस हमें याद दिलाते हैं कि चैंपियन बनने के लिए टैलेंट, टेम्परामेंट और टेनेसिटी तीनों की आवश्यकता होती है।
0: फ्रेंड्स, व्हेनेवर आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ी, क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन अ नेचुरल कनेक्टिंग पॉइंट। वी वॉच्ड अ मैच टुगेदर इन अहमदाबाद एंड कमिंग हियर टुडे, आई फील द सेम स्पोर्टिंग स्पिरिट वंस अगेन। वी आर ऑल्सो जॉइंड बाई स्टॉलवर्ट्स सच एज स्टीव वॉ and Lisa Sthalekar. Steve Waugh's mental toughness and Lisa Sthalekar's all-round excellence reminds us that becoming a champion requires three facets: talent, temperament, and tenacity.
1: Friends, sports Bharat aur Australia ke sambandhon ki ek majboot kadi hai. Aaj Pradhanmantri Albanese ke saath इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
0: फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स आर अ स्ट्रांग पिलर ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। It gives me great pleasure to launch the India-Australia Sports Collaboration Roadmap today with Prime Minister Albanese. Through this initiative, we will deepen cooperation not only in cricket but across a wide range of sports. We will work together in sports training, sports science and sports technology. We will strengthen our partnership both on the field and off the field as well. In India, we have democratized not only technology but also sports. Through the Khelo India program, children from small towns, villages and ordinary families have been given a platform to dream big.
1: Aaj Bharat mein sporting talent kuch bade shaharon tak simit nahi hai. Ye desh ke har kone se, har background se उभर रहा है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

0: 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है।
1: टुडे स्पोर्टिंग टैलेंट इन इंडिया इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू अ फ्यू मेजर सिटीज। इट इज एमर्जिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड। इंडिया विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030। एंड एज माई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी जस्ट सेड, वी आर ऑल्सो मेकिंग एवरी एफर्ट टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2036। Brisbane will host the Olympics in 2032. Preparing for these global sporting events will require the creation of sports infrastructure on a massive scale. This means that in the years ahead, we will have many opportunities to learn from one another and work together. I am also extremely delighted that a Big Bash League match will be held in Chennai, India. For any sporting league, staging an event in India guarantees tremendous reach and viewership.
0: इस वर्ष भारत में मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता और ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना। मेरी तरफ से सभी विमेन खिलाड़ियों को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि स्पोर्ट्स की तरह हमारी पार्टनरशिप भी हर क्षेत्र में चैंपियन बनेगी। मैं एक बार फिर खेल, युवा ऊर्जा और भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक सुंदर अनुभव कराने के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री एल्बनीसी का आभार व्यक्त करता हूं। लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस विन टुगेदर। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: फ्रेंड्स, this year India won the men's T20 World Cup and Australia emerged as the champions of the women's T20 World Cup. My heartfelt congratulations to all women cricketers for this great achievement. I am confident that just like in sports, our partnership too will become a champion in every field. Once again, I thank my friend Prime Minister Albanese for bringing us together for this wonderful celebration of sport, youth and India-Australia friendship. Let us play together. Let us win together. Thank you very much.
2: Thank you. Thank you, sir. Fantastic. Thank you. Fantastic.
3: All right, that was the Indian Prime Minister now giving a speech from the Melbourne Cricket Ground in Australia. We also have Amit Sarwal, the editor of Australia Today, joining us on the broadcast from Melbourne. You know, an important development now taking shape, Mr. Sarwal. We've seen the Indian Prime Minister just give a speech. Prime Minister Modi and the Australian Prime Minister right there. This is what is being dubbed as cricket diplomacy. Walk us through what exactly do you make of it?
4: Sports diplomacy, because both prime ministers mentioned that it will not be limited to cricket. Although the Australia-India connections in the past have been, you know, measured through cricket curry and Commonwealth connections, but it's moving beyond cricket now. It's going to be AFL, minor sports or major sports in India, such as kabaddi, kho-kho, are getting popularized in Australia. So it's going to be a major thing, and you have to look at the finances as well. You know, it may sound as a cliche, but India has emerged as the one-stop shop and solution to the world's problems, particularly if you look at sports with 1.4 billion population, a passionate number for sports. Albanese or Australia is looking for the support that they need. Big Bash League has been popular in Australia, but losing the momentum. And I think somewhere Australia is now cashing up on that, you know, the craze for IPL can lead to the

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid. What will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead. The NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026 on 15 July, only on NDTV Network.
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: बाय नाउ, सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस,
6: बाय नाउ, सेल।
5: होल्ड होल्ड,
6: बाय,
5: सेल इमीडिएटली।
4: कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? आस्क प्रॉफिट विद महिमा एंड पुनीत, मंडे टू फ्राइडे 10:30 AM. Only on NDTV Profit.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
8: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे

0: Welcome back. Well, more than a decade after signing a civil nuclear agreement, India and Australia finalised the arrangements needed to begin Australian uranium exports, even as Prime Minister Narendra Modi and Anthony Albanese expressed concern over renewed hostilities in West Asia and called for restraint. And earlier today, as you can see, Prime Minister Narendra Modi and the Australian Prime Minister Anthony Albanese shared the stage at the iconic Melbourne Cricket Ground. Prime Minister Modi signed cricket bats and jerseys, interacted with the Australian cricket greats as well. And the centrepiece of the announcement was the decision to stage the opening match of the Big Bash League 2026-27 in Chennai. Calling cricket a natural connecting point between our two countries, our Prime Minister launched the India-Australia Sports Collaboration Roadmap as well, with the Australian Prime Minister welcoming Prime Minister Modi back to the MCG, describing it as the birthplace of Test cricket and recalling the record-breaking Border Gavaskar Trophy as well at the venue.
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
2: Prime Minister Modi and I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism,

0: Australia hosting the 2032 Olympics and India bidding for the 2036 Olympics, which I'm certain Australia will support. There is a decade of opportunity ahead of us.
1: Well, through the journey of the JRC and NDTV campaign, Child Marriage Free India, we have brought you stories from India's villages, from the far east, most remote corners of our country. Today, we turn our lens on India's cities. You know, for every two girls married off in villages, one girl is married off in an urban space. An alarming reality that is echoed by the latest National Family Health Survey, or NFHS6. And this is a crime which often exists within touching distance of our own lives. We look at a story from Pune where a girl was saved from child marriage. Take a look.
2: Every single day, lakhs of people arrive in our cities to chase their dreams and build their lives. Yet, within the folds of these concrete jungles, thrives the insidious reality of child marriage. More often than not, it impacts girls and women known to us, who occupy the same spaces as you and I, removed just a degree or two from our own lives. 16-year-old Vaibhavi is one such girl, living a stone's throw from the bustling IT hub of Pune city. She was on the verge of being married off to a 25-year-old man when she was rescued in the nick of time.
3: Actually, एक मेरी फ्रेंड है जो अहिल्या नगर में रहती है, तो उसने मुझे ऐसे ही कॉल किया था शाम के टाइम पे और हमारी बात चल रही थी, तो उसने मुझको शेयर किया कि अरे मुझे ना हल्दी में जाना है करके. तो उसको मैंने पूछा किसकी हल्दी है, तो बोले नहीं मेरी बाजू में ही रहती है एक लड़की और उसकी शादी है और उसका जो एज है वो कम है. तो उसको पता ही था कि मैं काम करती हूँ और उसको ये भी पता था कि बच्ची की जो शादी है वो पूना में होने वाली है. मैंने मेरे एनजीओ को बताया इसके बारे में और उसके बाद मैंने चाइल्डलाइन को इन्फॉर्म किया, CWC को इन्फॉर्म किया और इनको इन्फॉर्म करने के बाद हमने वहाँ पे जो स्पॉट था वहाँ पे हम चले गए. वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ में चाइल्डलाइन का टीम था और जैसे ही हमने इन्फॉर्म किया था कि वहाँ के स्थानिक जो पुलिस थे वो वहाँ पे थे, ग्राम सेवक था, BDO था और देन और भी आंगनवाड़ी सेविका जो थी वो भी हमारे साथ में थी. हम लोग सब वहाँ पे पहुँचे और बच्ची का जो एज था तो सबसे पहले हमने वो वेरीफाई किया. देन जो फैमिली थी उनको बताया कि बच्ची का जो एज है वो कम है, तो ये चाइल्ड मैरिज होता है और अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी. तो उनका काउंसलिंग किया दोनों भी फैमिलीज़ का और फैमिली को समझाया, देन वो समझ गए कि नहीं बाबा कि हमें चाइल्ड मैरिज नहीं करना है.
2: The collective action of Child Helpline, the Gram Sevak, the Block Development Officer, Indapur Police, an Anganwadi worker and the local NGO, Committed Communities Development Trust or CCDT, a partner NGO of the Just Rights for Children Network, stopped the wedding before it could happen. As a result, no arrests were made. Today, CCDT continues to follow up regularly with Vaibhavi and her family to ensure her safety, education and overall well-being. Vaibhavi is still living safely at home with her family and is now preparing for her class 10 exams. Child marriage is a crisis thriving right inside our urban centres, fueled by migration, economic pressure and a lack of awareness and action on our part. Ultimately, child marriage is a crime and a grave violation of human rights, regardless of its geography.
4: ग्रामीण में तो केसेस वैसे आते हैं हमको, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरी भाग में नहीं आते. शहरी भाग से भी केसेस हमको आते हैं. शहरी भाग में भी जो भी वहाँ के जो ये है कम्युनिटीज़ वगैरह है, जो कि रूरल मतलब जो चाल वगैरह जो बोलते हैं, उस एरिया के भी लोग कैसा रहते हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है या फाइनेंशियली उनके इशू रहते हैं, उनको फाइनेंशियली वो बच्ची को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनको दिमाग में क्या रहता है कि बच्ची की शादी करवा दो और जो है बच्ची की शादी करवा दिए तो उनके ऊपर से जिम्मेदारी निकल जाएगी.
2: Vaibhavi's story tells us that vulnerable girls can be protected and given a second chance at childhood when vigilant local communities and civil society networks work together. Each one of us can make a difference. Stay alert to the warning signs in your own ecosystem. Your one act of vigilance can rescue a life and save a childhood.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर मसाला।
9: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
10: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: Before that day, going into school, what were the conversations around this bullying that, you know, you've claimed, and did she speak to you about it earlier?
1: Yeah. Okay, so a day before, that was Halloween, as you all know, she was playing with her friend. She collected almost 107 toffees, chocolates. She was playing with everybody. Ma'am, she was a bright child. She was the brightest star. I want to play one audio here.
2: 31st का ऑडियो है मैम, आप खुद सोचिए उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है. मैं प्ले कर रहा हूँ
0: जी.
3: अरे क्या स्टाइल है यार, तक अच्छा टर्न तो मैं भी नहीं ले पाती यार दादी. वाह रे वाह दादी यार.
2: मेरी मदर किसी शादी में गई थी, उन्होंने अपना चलने का वीडियो भेजा था, तब हमारे ने उनको वॉइस मैसेज
1: दिया. एक वॉइस मैसेज दिया that dadi you are looking very beautiful, you are walking like a model even cannot walk better than you. That was her state of mind. She was playing, she visited all the families one night before while playing Halloween and collecting all those toffees. She kept all her toffees in a bag. She told our maid and to me that these toffees I will eat for next 3 months. She could not see next 12 hours. She was very happy in the classroom. You could easily see how happy. We were told by the police that maybe because of Halloween she played, maybe because of that she jumped.
2: मतलब उनको सपना आया हुआ, dream आई.
1: Maybe she got a dream that time in the classroom.
0: So there's been total denial till now. There's been no cooperation whatsoever by the school.
2: Rajasthan Education Department की ये investigation team की wording है कि उसको सपना आया होगा इसलिए उसने ऐसा कर लिया. मतलब सर आपने सीसीटीवी देखा होगा, कैसी बात कर रहा. राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दे दी है स्कूल को कि कुछ नहीं हुआ. एक तरफ सीबीएसई ग्रॉस नेग्लिजेंस बता रही है, सिस्टमिक फेलियर बता रही है. राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि इनकी सारी एनओसी ठीक है, फायर एनओसी ठीक है, वाटर ड्रिंकिंग सिस्टम ठीक है. हमने कहा बात बुलिंग को है, काउंसलिंग को लेकर हो रही है, यहाँ वाटर को लेकर नहीं हो रही, एनओसी फायर की वो लेकर नहीं हो रही.
0: विजय जी, डिड शी एवर कम बैक फ्रॉम स्कूल सेइंग दैट शी वाज बीइंग बुलीड?
2: नहीं, उन्होंने जब जब अमायरा ने 3 से 4 इंसिडेंट हुए थे 1.5 साल के अंदर, जब जब अमायरा ने हमें कुछ बताया, जैसे मिडिल फिंगर का एक इंसिडेंट हो गया, हमने इसको क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर को रिटर्न में दिए हैं कंप्लेंट्स, और वो कंप्लेंट्स हमने पुलिस आयोग को भी दिए हैं. स्कूल से हमारा सिर्फ ये इश्यू नहीं चाहता था कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे ठीक, लेकिन कभी भी इस पर कुछ हुआ नहीं. हमने स्कूल चेंज करने की कोशिश करी, मार्च 2025 में हमने सेंट जेवियर्स में एप्लीकेशन डाली, लेकिन किसी वजह से हुआ नहीं, वैकेंसी नहीं थी. फिर हम प्रिंसिपल के पास गए 22 मार्च को, जब हमने इनका वो
1: रिपोर्ट का लेने रिजल्ट,
2: तब प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ने बोला कि नई क्लास होगी, नई क्लास टीचर होगी, हम इसको संभाल लेंगे और एकदम सही रहेगा. और मेरा बच्चा की अटेंडेंस 93/90 थी, वो क्लास की टॉपर थी, वो 11 अक्टूबर को ऑलराउंडर एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है उसको 4th grade का. उसके अलावा वो कथक में अवार्ड ले चुकी, डांस में ले चुकी, सिंगिंग में ले चुकी, स्पेलिंग बी में रीजनल क्वालिफाइड कर चुकी, ओलंपियाड में ले चुकी, दोहा वाचन में ले चुकी, बास्केटबॉल में ले चुकी, वायलिन में ले चुकी, हर एक्टिविटी में वो पार्ट करती थी.
1: देयर वाज मैम, आप सोचेंगे इतनी ब्राइट, शी वाज अ वेरी वेरी ब्राइट एंड वेरी काइंड चाइल्ड मैम, वेरी काइंड चाइल्ड. दैट्स व्हाई शी इट इज समथिंग लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ इमेंस बुलिंग बाय द क्लासमेट्स एंड ऑफ कोर्स फॉर हर. It's really like Guru Brahma, Guru Vishnu. She used to sing all that time, this Doha. She used to say for her, the teacher was of, she was a god for her. And she always treated her teachers with, with the status of the god. She used to say that my teachers are very nice. She never complained anything about anyone. She was a great child, ma'am. And you can see in the class there was no discipline, zero discipline in the class.
2: एक बार एक बच्चा गिर गया था, उससे गलती से बर्थडे पे धक्का लग गया था, घर पे आके रोने लग गया हमारा. क्या हुआ कि मेरे से गलती से बर्थडे के दिन किसी बच्चे के धक्का लग गया, पापा वो गिर गया, रो रही है वो.
0: Look at the empathy.
1: Yeah, she was having yes empathy for everyone. For everyone, she was having empathy. And ma'am, it needs a lot of courage to approach to the teacher. She was just 9 years old. She was going to the teacher for 5 times.
2: Trust leke jaaye.
1: Yeah. Her trust was, her spirit was broken by Mrs. Punita Sharma totally. The way she walked out from the class, you can see she was walking very fiercely and walking very fast out of the class. She closed the door. She was running in the corridors.
0: And no one followed her.
1: No one followed her.
0: And when she walked out of the class, there were children, there was a teacher in class. You could see her leaving the class and no one followed.

0: down the aisle. And look at her tragic end. She fell from 48 feet. What was her state of mind at that time? We are unable to sleep these days. From 8 months, we are not sleeping. We are not sleeping. We are in so much pain. We are not going to our offices. We are sitting in a different city. That house is locked since she left. We do not have the courage to see her things and to open that house. We are staying at a different place. We want a stricter action against the school.
1: But I haven't seen parents as brave as the two of you. Vijayji, before I wrap this up, I want the people of India who should be standing every moment with the two of you to understand what your journey has been in the last 8 months.
2: Ma'am, जब से हमने ये इंसिडेंट हुआ है अमायरा का, तब से हम वॉइस रेज कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए. ठीक है, 22 नवंबर को हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने अपील की थी. 5500 स्टूडेंट है उस स्कूल में, उनके पेरेंट्स से अपील करी थी, आप आइए क्योंकि आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है. अमायरा की क्लास से एक भी पेरेंट नहीं आया, स्कूल से एक या दो पेरेंट आए. 22 नवंबर को 700-800 लोग आए थे. उसके बाद में जब CBSE ने कॉग्निजेंस लिया और डीफिलेट किया स्कूल को 30 दिसंबर को, आप सोचिए 31 तारीख को इन्होंने दो ग्रुप बनाए स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के नाम से. उसमें उन लोगों ने हमारे अगेंस्ट इतनी चीज़ें बोली, फ्रेम करनी चाहिए कि हमारा डाइवोर्स आ रहा है, हमारा 3 महीने इसके पास रहती थी, 3 महीने उसके पास रहती थी, कुछ भी, क्योंकि स्कूल को डिफेंड करना था. उन्होंने टीचर्स के बच्चों को, हॉस्टल्स के बच्चों को आगे कर दिया. आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, उन बच्चों को आगे कर दिया कि ये स्कूल हमारा बहुत अच्छा है. ये वो बच्ची परेशान थी, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, मतलब कुछ भी चीज़ें हमारे अगेंस्ट चलाई, लेकिन हमने हार नहीं मानी. हमें लगा कि अगर हम बैठ जाएंगे तो ये मुद्दा दब जाएगा, और हर स्कूल में, किसी भी स्कूल में कुछ भी होगा ना तो कुछ नहीं होगा. आप एक चीज़ सोचिए, हाई कोर्ट में जज ने मुझसे बोला कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या ग्रीवेंसेज है, आप चाहते हैं कि ये बच्चे को हम मैं शिफ्ट कर दूं और उसके बाद में ये बच्चे जो 10 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं उनके फ्रेंड्स छूट जाएं. मैं कहा सर, मौत से बड़ा कुछ नहीं होता. मैंने जज साहब को बोला सर, मौत से बड़ा कुछ नहीं होता. बच्चा एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है वो अपने क्या साथ से एडजस्ट कर सकता है? क्या वो वापस आ सकता है? तब जज ने वो बात पलट दी. मतलब इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं इस 8 महीने के दौरान. फिर भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, स्कूल को पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा. इस मरने से बड़ा क्या होगा? फिर तो हर स्कूल बोलेगा कि जयपुर में तो इतना बड़ा हादसा हो गया था, हमारा तो इतना छोटा सा हादसा हुआ, हमें भी छोड़ दो.
0: As per my search, there has not been any suicide case of 9 years old in the school premises. I have searched it. There have been murders. There have been other things. बच्चे स्कूल से परेशान होकर आते हैं और घर में सुसाइड करते हैं. अमायरा को जो भी कहा गया दैट डे, दैट वॉज समथिंग रिलेटेड टू कि वो उस दिन घर जा ही नहीं पाएगी. शी वॉज नॉट अलाउड टू गो बैक होम. Her parents will be called, the principal will be called here, she will be rustigated from the school. It was so intense that Amira was short of time. She could not call us.
2: पैनिक में थी, आप देखो ना, भागती हुई गई है. मतलब कुछ तो ऐसा बोला गया कि उसके साथ कुछ होने वाला है अभी कभी, और 10 मिनट में छुट्टी होने वाली थी मैम, सिर्फ 10 मिनट में, आप सोचो.
1: विजय जी, शिवानी जी, as a parent all I can say is this is every parent's nightmare that you're living. As a journalist I can say you're not alone. Thank you for joining me here on Breaking Ground today.
0: Thank you. Thank you so much.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों से सरसों।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid. What will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
10: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
11: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
12: Really?
11: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: B-Mark, the mustard specialist since
5: 1933. सरसों
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: India Inc's most respected name.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: Creator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
5: The thug you see is Shinde Sena cooperator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
6: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
7: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
8: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
7: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
8: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
7: इसका मतलब कि आगे जाके भी सर, अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
8: प्रशिक्षण हम हमारे
7: नहीं मांगेंगे
8: सर।
9: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.

0: कि अगर उस चीज़ को और बढ़ाया गया है तो हम शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है क्लास टीचर के अगेंस्ट में, जो कि इस सिचुएशन को आराम से रोक सकती थी लेकिन उन्होंने रोका नहीं। और 8 महीने बाद में भी 3 IO चेंज हो चुके हैं, उसके बाद भी इन्होंने JJ 75 लगाया है क्लास टीचर पे, और जो प्रिंसिपल इंदु दुबे है और जो ऑनर है सौरव मध्य, उनके खिलाफ सिर्फ नेग्लिजेंस लगाया है। जब से पूरा स्कूल का जो होता है सिस्टमिक फेलियर है।
1: You face trauma, you face the worst tragedy a parent could. What is the harassment you're alleging?
2: So they were saying there was no negligence in this case. They were saying this on my face that there was no negligence. This case should be FR. I never know the meaning of FR. So I searched it. It is FR means the closure of the case. There is no
1: They
2: criminal
1: want to
2: action.
1: close this case?
2: They wanted to close this case.
0: कमिश्नर कमिश्नर ने बोला कि इसमें तो कोई क्रिमिनल एंगल ही नहीं
2: There is
0: है।
2: no criminal angle. Your child must be upset because of something else.
0: फिर हमने हाईकोर्ट में अपील करी, हाईकोर्ट में रिट लगाई, फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदला गया,
2: बदला गया।
0: फिर उन्होंने ये JJ 75 का एक्ट लगाया है। सोचिए
1: तो अभी वेयर डज द इन्वेस्टिगेशन स्टैंड राइट नाउ, गिवन दैट यू सेड दैट 3 IOs हैव बीन चेंज्ड, वेयर डज द इन्वेस्टिगेशन स्टैंड एज
2: तो
1: ऑफ नाउ?
2: दे हैव सबमिटेड द चार्जशीट इन द मजिस्ट्रल कोर्ट on 2nd of July, and they have put three charges, like a charge of charge against the class teacher, which is Section 75 of JJ Act, and 238
0: बैग
2: for hiding her bag and jacket for 10 days. For 10 days she took all her things in her possession. The class teacher took all the things in her possession, and also negligence, 106 negligence. And on the owner and on the principal, they have just levied plain simple negligence 106.
1: Did both of you have a conversation with the teacher in that CCTV footage after the tragedy, asking her what did your daughter say to her? What was her response?
2: Basically.
0: मैम, हमने पुलिस के सामने ही, क्लास टीचर के सामने सीसी फुटेज देखा था। हम जब जब मिनट बाय मिनट देखा है, हमने बोला मैम आप क्या बोल रही है उसको, ये हमारे आपके पास आ रही है। तो मैडम का रिएक्शन था कि ये बोल रही है कि बच्चे मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, प्ले कर रहे हैं। मैंने मैडम ऐसा तो कुछ बोल नहीं रही वो। फिर वापस पूछा तो बोले नहीं, वो ऐसे बोल रही कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। मैम ये तो 3 सेकंड की बात हो गई, वो बच्चे आपके पास में 1 मिनट तक खड़ी है, कुछ कुछ कह रही है, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करके भी कुछ बोल रही है, तो कुछ तो कह रही होगी। नहीं सर, वो ऐसे कह रही कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। मैं कहा मैम, मैंने पुलिस को बोला, मैं कहा सर ये तो 3 सेकंड में ख़त्म कर रही है अपनी बात, जब से ये तो शाउटिंग करती दिख रही है, तो ये कुछ बोल क्यों नहीं
1: And
0: रही।
1: that
0: और अगर
1: CCTV footage is a long footage. It doesn't just end in a minute.
0: 4 घंटे की है, पूरा पूरा 4 घंटे में 8 मिनट में आप सोचो क्या क्या हुआ है। उसके बाद में 8 महीने बाद में पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन क्या थी। हम पूछते हैं ये तो पता था क्लोजर के लिए कि उसमें बोला क्या गया था उसको, तो उनके पास कोई
2: That
0: आंसर
2: is
0: नहीं
2: in
0: है।
2: my closure. For our closure, we are looking what she went through in our final hours. We have requested multiple times to the parents of those classmates. We have requested them over phone. We have requested the police officer, Mrs. Jigyasa, who is the current IO, the earlier Mr. Aditya Kakde, our IPS officer. We really wanted a closure. We wanted what bad happened with her. What were the last words which she faced? I mean, what kind of humiliation she went through? We really want to know as a parent. This will be our closure. We are looking for this kind of closure now. And ma'am, it needs a lot of courage to approach to the teacher. It is just, she was just 9 years old. She was going to the teacher for 5 times.
0: ट्रस्ट लेके जा रही
2: Yeah. Her trust was, her spirit was broken by Mrs. Punita Sharma totally. The way she walked out from the class, you can see she was walking very fiercely and walking very fast out of the class. She closed the door. She was running in the corridors.
1: And no one
2: She,
1: followed her.
2: no one followed her. No one followed her.
1: And
2: There
1: when she
2: was
1: walked out of the class, there were children, there was a teacher in class. You could
0: floor
1: see her
0: attendant
1: leaving the
0: भी नहीं।
1: class and no one followed her.
2: No one followed her. No one bothered. No one bothered. There is a footage after the incidents also, which I would like to bring the content of that. At 11, 12:28, Amira jumped from 4th floor. Right? After that, her classmate came inside the class running, saying to the teacher 4 minutes later, she was running and she was crying and hugging the teacher, Punita Sharma, and saying, "Ma'am, Amira gir gayi hai." I spoke to her mother and she confirmed me that Amira gir gayi hai ma'am. Aur wo ro rahi hai. We will release that footage as well. The teacher was in a state of shock. she started checking all the notebooks.

0: that we are unable to sleep these days. From 8 months, we are not sleeping. We are not sleeping. We are in so much pain. We are not going to our offices. We are sitting in a different city. That home house is locked since she left. We do not have the courage to see her things and to open that house. We are staying at a different place. We want a stricter action against the school.
1: But I haven't seen parents as brave as the two of you. Vijayji, before I wrap this up, I want the people of India who should be standing every moment with the two of you to understand what your journey has been in the last 8 months.
2: Ma'am, जब से हमने ये इंसिडेंट हुआ है मायरा का, तब से हम वॉइस रेज कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है। 22 नवंबर को हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने अपील की थी, 5500 स्टूडेंट थे उस स्कूल में, उनके पेरेंट्स से अपील करी थी, आप आइए क्योंकि आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। अमायरा की क्लास से एक भी पेरेंट नहीं आया, स्कूल से एक या दो पेरेंट आए। 22 नवंबर को 700-800 लोग आए थे। उसके बाद में जब CBSE ने कॉग्निजेंस लिया और डीएफिलेट किया स्कूल को 30 दिसंबर को, आप सोचिए 31 तारीख को इन्होंने दो ग्रुप बनाए स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के नाम से। उसमें उन लोगों ने हमारे अगेंस्ट इतनी चीज़ें बोली, फ्रेम करनी चाहिए कि हमारा डाइवोर्स आ रहा है, हमारा 3 महीने इसके पास रहती थी, 3 महीने उसके पास रहती थी, कुछ भी, क्योंकि स्कूल को डिफेंड करना था। उन्होंने टीचर्स के बच्चों को, हॉस्टल्स के बच्चों को आगे कर दिया। आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, उन बच्चों को आगे कर दिया कि ये स्कूल हमारा बहुत अच्छा है, ये वो बच्ची परेशान थी, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, मतलब कुछ भी चीज़ें हमारे अगेंस्ट चलाई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमें लगा कि अगर हम बैठ जाएंगे तो ये मुद्दा दब जाएगा, और हर स्कूल में, किसी भी स्कूल में कुछ भी होगा ना तो कुछ नहीं होगा। आप एक चीज़ सोचिए, हाई कोर्ट में जज ने मुझसे बोला कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या ग्रीवेंसेज, आप चाहते हैं कि ये बच्चे को हमें शिफ्ट कर दूं और उसके बाद में ये बच्चे जो 10 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं उनके फ्रेंड्स छूट जाएं। मैं कहा सर, मौत से बड़ा कुछ नहीं होता। मैंने जज साहब को बोला, सर मौत से बड़ा कुछ नहीं होता, बच्चा एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है वो अपने क्या साथ से एडजस्ट कर सकता है, क्या वो वापस आ सकता है? तब जज ने वो बात पलट दी। मतलब इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं इस 8 महीने के दौरान। फिर भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, स्कूल को पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा।
1: विजय जी, शिवानी जी, एज अ पेरेंट ऑल आई कैन से इज दिस इज एवरी पेरेंट्स नाइटमेयर दैट यू आर लिविंग। एज अ जर्नलिस्ट आई कैन से यू आर नॉट अलोन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन ब्रेकिंग ग्राउंड।
0: थैंक यू सो मच।

0: खास सुबह।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरी राजा
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों। The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
7: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
8: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
9: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
10: Humko haq हमारे पार्टी के बालाजी ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
9: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
10: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
9: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर, अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
10: प्रशिक्षण हम हमारे
9: नहीं मांगेंगे
10: सर।
11: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
11: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश मात्रे ऑफ डोंबिवली। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
12: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
13: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
14: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
13: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
14: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
13: इसका मतलब कि आगे जाके भी सर, अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
14: प्रशिक्षण हम हमारे
13: नहीं मांगेंगे
14: सर।
15: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9

0: is undeniable. Something catastrophic happened. Women walked into government hospitals to bring new life into the world. Some never returned home. Weeks later, in some cases months, the investigations are still underway. The government has not yet given a definitive answer on what caused these tragedies or who will be held accountable. The question also arises whether something like this was always in the making. Five women walked into these government hospitals hoping to return home with their babies. None of them did. One of them was just 5 months pregnant. She needed stitches to save her pregnancy, but instead lost her life. Payal was the first to die. Hours after giving birth, her condition suddenly worsened. Then came Jyoti, then Pinky, then Priya. Five women, five families shattered. Families that blame doctors and a healthcare system they say failed them. Officials insist only three of the five deaths were linked by similar complications leading up to the renal failure stage, part of the same cluster. But the tragedy did not end there. Several other women suffered similar complications. They survived, but many are still undergoing repeated dialysis instead of caring for their newborns. No one seems to have a clear answer yet.
1: मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पर लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 डॉक्टर आया वहाँ पर। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ICU में शिफ्ट किया हमने उसको। उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
2: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं। मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है। 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे। कब करेंगे? मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे?
3: हमारा तो इंसान गया है, इसमें दोषी कौन है? या कोई दवा कंपनी है, या कोई डॉक्टर्स हैं, या कोई सरकार है, या कोई उसके कंपनी से कोई पैसा खा के इसको चला रहे हैं सरकारी, इसमें कौन है इसके जिम्मेदार? उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। दोषी हमारा इंसान गए तो उसको दोषों से तो मर्डर है। मेरा मेरे दो दो जनों का मर्डर हुआ है मैम। मेरा
4: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
5: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी। शुरू से लेकर अंत तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी। शाम को 4:30 करीब डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानन में सुबह वहाँ लेकर गए ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पे रही।
4: किडनी का
5: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी। सब छूट गया, टैक्सी चलाता था, मेरे पास गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम। तब से 2 महीने से इन्हीं के साथ हूँ। हर तीसरे दिन तो डायलिसिस होती है।
4: कितनी बार डायलिसिस हो चुकी है?
5: मैम 24-25 तो हो ही होंगे।
0: Sources have alleged that there were issues with monitoring the urine output of the new mothers after delivery, a critical parameter that they stated was not tracked adequately in some cases at the Kota Medical College Hospital. It was flagged that there was poor tracking of blood pressure levels, ECG functions, hydration, liver and kidney function tests. Recommendations have also been made for better infection control mechanisms. The emergency operation theatre, where six of the deliveries took place, has now been shut and is being renovated. The labour room had a seepage. However, officials say bacteriological cultures from the OT showed no signs of contamination. In the aftermath of the Kota maternal deaths, drug controller officials also found that some oxytocin vials contained water instead of the drug. However, NDTV has come to know that doctors and investigators now believe oxytocin is unlikely to have directly been the cause of these deaths. Attention has shifted to other possible factors for the deaths. Sources say reports on surgical items, IV sets and IV cannulas are still awaited, while tests on samples of the used antibiotics and several other medicines have come clear. Fresh samples of medicines linked to patients developing such symptoms as shivering have also been sent for analysis. Some findings have already been submitted to the Health Ministry, but sources say investigators increasingly believe the tragedy may have been multifactorial, involving a combination of patient condition, medical consumables, environmental factors, as well as a variety of other factors. As the probe continues, there is still no clear answer. Two doctors, including one contractual doctor, have been suspended.
6: उसके बाद मतलब मेरे को यूरिन नहीं आया मतलब फिर 9 तारीख को फिर मुझे सवेरे यहाँ लेकर आए थे 7 बजे के आसपास फिर उसके बाद का फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरा पहले का भी बच्चा नॉर्मल नहीं है नहीं नहीं कुछ भी इशू नहीं था मेरा तो
4: डॉक्टर ने क्या बोला कैसे ये
6: वहाँ पर तो क्या नाम से ऐसा कुछ हुआ नहीं
4: बताया नहीं
6: है नहीं बताया नहीं है हाँ मैंने बताया था
7: हाँ बीपी कम ज़्यादा हो जाती बीपी बढ़ जाती कभी कभी कम हो जाती है फिर शुगर बढ़ जाता है दिक्कत तो 5 तारीख से चल रही है तो अस्पताल में रहता हूँ दो महीने बच्चा बच्चे सारे यहीं है और 50,000 रुपये खर्च हो गए मेरे पास पैसे भी नहीं रहे अब तो कहाँ तक खर्च करेंगे बच्चा बच्चे के लिए और बच्ची की तबीयत खराब हो गई आज देखो मेरा तो उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा अब क्या करूँ उस बच्ची को
8: और तो मैं स्टाफ से ये खुद बोल के आई थी मैं कहा आपको मैं पार्टी दूंगी मेरे बेबी बॉय हुआ है ना ये तक बोल के आई थी बट आते ही फिर थोड़ी देर सोई है ना फिर उसके बाद मेरी यूरिन आना बंद हो गया उस टाइम तक तो आया था अच्छा सा फिर उसके बाद यूरिन आना बंद हुआ फिर उसके बाद ही मेरी कंडीशन खराब हो गई
0: Sources said the new Kota Medical College Hospital handles nearly 100 deliveries a day. With such a heavy workload, they claim urine output, which ideally should be monitored every 2 hours, may not have been tracked consistently in every case.
9: Renal failure, there are more than 1,000 etiologies in renal failure. In these patients, the main reason for renal failure is hypotension, decrease in the blood pressure. 4 committees has examined and all the committees, they have clearly stated that everything was normally monitored.
0: Senior doctors say many of the women they treat have had multiple pregnancies, are anemic, or arrive severely dehydrated. They say underlying health conditions coupled with poor nutrition and socioeconomic factors can increase the risk of serious complications during and after childbirth.
10: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो जोधपुर हो नागौर हो इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है उसको पहले से ही बीपी है प्रेग्नेंट है ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई ऑपरेशन हुआ तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है तो यह एक इर्रिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं
0: For families in Kota, the wait for answers has become as painful as the tragedy itself. They're still searching for accountability and for the truth behind the events that changed their lives forever. Like thousands of others from the rural corners of India, they went to government hospitals in larger cities in search of safe and affordable institutional deliveries. Instead, that search ended in inconsolable loss.
11: In Rajasthan, every 1 lakh deliveries that take place, 1 lakh deliveries, be it cesarean, be it natural delivery, the death rate is less than 48 per 1 lakh. And in JK Lawn, there are 6,000 deliveries every year. The mortality rates in these deliveries is to the tune of 0.001%. One of the common factors we found is the heat wave, the heat. You say, how do you mean, how does it correlate with heat? Because dehydration takes place.
0: Bikaner, six mothers and stories of loss. Senior doctors at the PBM hospital in Bikaner insist that the six women do not represent a single cluster with a common cause. One of them was 6 months pregnant and had a history of hypertension. Another had diabetes. They say each patient had a different clinical history. It is claimed that they were mostly referral cases and there were pre-existing risk factors that ranged from severe pregnancy-induced hypertension and postpartum hemorrhage to diabetes and kidney disease. According to these doctors, acute kidney injury is a known complication that can arise from multiple conditions and that the blood cultures of all the patients had come negative. The PBM Hospital's internal committee has concluded that no common denominator has emerged. Instead, doctors believe the complications may have been multifactorial, involving a combination of underlying illnesses like diabetes, severe anemia, dehydration and poor nutrition, as well as environmental factors such as extreme heat. Investigators say a final conclusion can only be drawn once all the pending reports are received.
12: Clear gaya jad bate main bharti kara di jad ke bachcho to una lo jad me theek raat bhar bin bharti ra ke subah 9 baje bhi ar pesan yo jad babu yo jad me sab khush hua hai baad me ke na gayi me asar da khane jad me kyu kai yo ke bhai ka apne shikshar dodi ke man sardi lage le re hu 2-3 ghante baad
4: delivery par bachche se mili
12: thi ha bachche mili maau mili ke papa ne bulo jan me papa ne phone kari me kaho ke jyada dikkat hogi jan me kai ho ke ye khatam hone wali hai jan me ke ek dam riya kai ho
4: normal delivery thi
13: aapki normal
4: delivery ke baad sab kuch normal tha
13: ha
4: fir aapko kahan leke gaye
13: patient room mein
4: wahan pe kya hua
13: wahan tak pata nahi gas karte tha pata nahi chala hua
14: 7 hours तक बिल्कुल नॉर्मल थी कोई दिक्कत नहीं थी डिलीवरी होने के बाद में भी फिर हमें बोला गया ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है इनको ऑपरेशन में लेके जाना पड़ेगा उसके बाद में वहाँ से लेके आए बाहर निकाले फिर बोले वहाँ लेके जाओ ये फाइल लेके जाओ आप वहाँ डॉक्टर से हम दे रहे हैं वहाँ पर जाके दिखा के आओ फाइल दिखा के आए हम वहाँ पर तो वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला कि पहले तो वार्ड का बोला हमें वार्ड में लेके जाएंगे उन्होंने बोला नहीं हम सीधा आई सी यू में लेके जाएंगे इनको
15: क्या हाथ में मिस्टेक बन गई उल्टे पर सर रहा था उल्टे सदर बचपन काट दिन ऊपर लगा ऊपर लगा थोड़े दिन में उल्टे हुए रात रहा 10 बजे ले गए ट्रमा सेंटर डायलिसिस कराया रात 2 बजे पाचा लिया
16: गणित को नहीं शुगर थे
17: शुगर है अच्छा और ये बस जब वो पेट से है होती है तभी शुगर है कि ऐसे भी शुगर है
16: शुगर है थोड़ी बहुत
17: थोड़ी बहुत शुगर है
16: फिर तबीयत डिलीवरी हुई बाद हुई पहले सही है डिलीवरी हुई जिन्हें ऑपरेशन डिलीवरी हुई सही 8 तारीख डिलीवरी हुई 21 तारीख बाद में खराब गलत
18: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं क्या अभी 26 दिन हो गए
11: द पेशेंट्स हु डाइड दे वर पेशेंट्स हुज फाइल रिपोर्ट्स यू सी वर कोमॉर्बिड यू नो लाइक इन जोधपुर जॉन्डिस हाई डायबिटीज High blood sugar, I mean your hypertension. AIIMS team came, they did a full inspection and they did tell us that you have to tighten your SOPs. In Bikaner, one lady had gone to Nagaur. Then she got into complications and she got onto ventilator. From ventilator, she came down to Bikaner. She was even more

0: sick. And so again in Bikaner, she was put onto ventilator. So all these ladies who came there were already in a critical state. They never came as normal deliveries.
1: For many in Rajasthan, including senior doctors, the events unfolding today bring back memories of 2011, when contaminated IV fluids at a government hospital in Jodhpur claimed the lives of 18 women. That tragedy exposed deep cracks in the public healthcare system and prompted promises of reform. 15 years later, another series of unexplained maternal complications is under investigation. Sources say investigators are also examining the IV fluids administered to these women, though the reports are still awaited. Whether history is repeating itself remains unclear. Until those answers come, one question continues to haunt Rajasthan. Were the lessons of 2011 ever truly learned?
2: वो इंफेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी.
3: अच्छा.
2: यूरिन नहीं आ रहा था.
3: अच्छा.
2: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गए, पीलिया वगैरह वो सब कुछ हुआ है, किडनी में भी असर. ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी आई होगी जिससे हो रहा है.
4: यहाँ आने के बाद इलाज अच्छा हुआ तो अब मेरा थोड़ा उम्मीद जागी है. बहुत परेशानी हुई हमको और हर चीज़ के लिए हमें वहाँ पे बहुत वेटिंग करना पड़ता था रिपोर्ट के जरिए, और हो सके तो दूसरे दिन मिलती शाम को भी. बहुत परेशानियाँ झेल रही. हाँ, बच्चा भी है, उनका भी बहुत परेशानी का है. अभी कौन उनकी देख रहेगा, माँ तो यहाँ पे है उनकी.
5: MDM मेडिकल ICU में रेफर करा दिया गया, और जो बाकी 6 पेशेंट हमारे यहाँ थे उनको एहतियात तौर पे, प्रिकॉशनरी तौर पे हायर एंटीबायोटिक्स पे ले लिया गया. 20 जून को जो ये सैंपल्स लिए थे OT के, गायनी OT के, वो सभी नॉर्मल हैं. और पेशेंट्स के भी 20 जून को सैंपल ले लिए गए थे, उसी दिन प्रॉम्प्टली सभी पेशेंट्स के वेजाइनल स्वैब, उनका ब्लड कल्चर के लिए ब्लड लिया था, यूरिन लिया था, वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं.
6: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, IV फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितनी भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे. ये IV फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने IV फ्लूड काम लिया था. बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे.
7: 2 घंटे बाद तबीयत खराब हो गई.
8: 2 घंटे बाद क्या होने लगी?
7: ब्लीडिंग हो गई थी. दूसरे दिन फिर सांस की तकलीफ हो गई थी, ऑक्सीजन लगाया था,
8: ब्लड चढ़ा था.
7: रात को उसी दिन
9: वो ऑपरेशन किया था, उसके बाद तो सही बता रहे थे, फिर अचानक से वार्ड में पता नहीं क्या हुआ उनको. तो नॉर्मल कुछ हुआ था, BP डाउन हो गई थी वगैरह, और बाकी वाले को है जो किसी के ब्लीडिंग हो रही थी, फिर एक के होने शुरू हुए, दूसरे के हो गई, दूसरे के तीसरे के हो गई.
10: टू नो वॉट कैन बी द पॉसिबल और एग्जैक्ट कॉज ऑफ these types of happenings in these patients who has been clustered on that particular day, it is a little premature to say, because we have taken the samples of most of these drugs and surgical items and we have sent it for the evaluation. Usi cheez ko humko investigate karna hai ki is tarah ke happenings mein humko ye lagta hai ki koi cheez aisi cheez gayi hai jisko बहुत प्रीफॉर्म्ड फॉर्म में गई है, जिससे हमको तो उसको टेस्ट करने के लिए जब तक हमारे पास में जब टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तो उसको हम नहीं कह सकते. पर हमें इन चीज़ों का जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो हमें सस्पिशन रहता है.
0: कैन सी द मेडिकल रिकॉर्ड एंड द मेडिकल रिकॉर्ड इज ओनली हैंडेड ओवर वंस यू आर डिस्चार्ज्ड. सो व्हेन दे डिस्चार्ज, होपफुली गॉड विलिंग दे विल बी डिस्चार्ज, दे आर रिकवरिंग ऑलराइट, मेडिकल रिकॉर्ड्स विल बी गिवन. But if they want to access the medical record, there's nothing hidden about it. There's no secret about it, about the medical record. They can be shown immediately. AIIMS team came, they did a full inspection, and they did tell us that you have to tighten your SOPs. They have told us certain SOP measures, which Pan Rajasthan, we are putting SOPs to

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर डायल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: वी आर ओवर जिमी।
10: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: टू नेशंस वन डिफाइनिंग विजन, फ्रॉम क्रिटिकल सेमीकंडक्टर्स एंड हाई स्पीड रेल टू सिक्योरिंग द वास्ट वाटर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक, द ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल पार्टनरशिप इज टेकिंग शेप। टुगेदर द विजनरी माइंड्स रीराइटिंग ग्लोबल डिप्लोमेसी, ड्राइविंग इकोनॉमिक पावर एंड फोर्जिंग अ मैसिव मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर। NDTV presents the Indo-Japan Strategic Dialogue.
12: The fact that there is now suddenly a raging debate with regard to ethanol, why is it that it's happening now?
13: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years, and by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
14: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरी डे।
11: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स,
15: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव,
11: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी and international affairs.
16: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
17: The Ayatollah Khamenei is gone.
18: There has been a missile attack right behind you.
19: And we need to rush into a shelter.
20: Heading there.
21: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
11: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
22: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
23: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
24: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
25: It's also important that how they are reshaping the industries.
26: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
11: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
14: चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
0: 1933। सरसों बाय सेल होल्ड होल्ड
11: confused.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: We are over, Jimmy. Hey,
10: लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: The fact that there is now suddenly a raging debate with regards to ethanol, why is it that it's happening now?
12: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years. And by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
13: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
14: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea.

0: के विनती करूंगा कि आप एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में काम करें, इससे इसमें ही आपका भला है।
1: टुडे पंजाब कांग्रेस इज इन अ क्राइसिस इन अ कॉन्फ्लिक्ट मोड, ऑन द अदर हैंड राहुल गांधी इज ऑन अ हॉलिडे मोड। द रियल क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड इन ऑल दिस एपिसोड, कांग्रेस एपिसोड, वेयर इज राहुल गांधी? इज हैज राहुल गांधी बीन इन द कंट्री फॉर द पास्ट 20 डेज? इज राहुल गांधी टुडे इन द कंट्री? द क्लियर आंसर इज नो।
2: All right, let's take this across to the guests joining us now. We have Anand Dubey from the Shiv Sena UBT, Dr. Seema Malik from NCP Sharad Pawar, Siddharth Yadav of the BJP joins us. But reveal, what is the truth? Varun Singh, what's going on? Is the NCP Sharad Pawar splitting, joining the BJP, staying where it is? Why is Sanjay Raut so hurt, or is it a storm in a teacup? What are you hearing?
3: Oh, storm in a teacup itself explains what exactly Supriya Sule wants to say. And not only that, Sanjay Raut, I don't know what exactly he's up to. One day he's very unhappy and the other day he's very happy with calling Sharad Pawar as the supreme leader. See, one thing is very clear. Not all of the leaders in the NCP Sharad Pawar camp want to join the Congress that was floated, one of the ideas that was floated to them. And it is true that NCP Sharad Pawar, if he wants to merge his party, he wants to be in power. He has been in power in the state for all these years. This is the first time in the last 10, 12 years that they have not been in power. The moment he wanted back power, he formed an alliance that no one had ever thought of. Uddhav Thackeray coming, Congress coming, while Congress and NCP were together. So his party and his leaders cannot stay without power. And somehow, after...
2: Arey, aap jalebi kyun bana rahe ho, Varun Singh? Out of power, in power, are they joining the BJP or not? Sidha-sidha bolo na, aare ki nahi aare?
3: Nahi, I don't think they are joining BJP. There are certain talks that are happening. But I doubt that they would join the BJP. They may...
2: Sanjay Raut ko gussa kyun aata hai? Jab koi kahin ja nahi raha, sab kuch changa chal raha hai, toh wo kyun gussa ho raha hai?
3: See, Sanjay Raut ko har cheez pe gussa aata hai. A problem unka ye hai ki he gets angry even if and he talks about, see, you know, he should maintain his calmness, which he cannot. He says that he and his leaders do not go and meet people who have abandoned them, but they go and meet Raj Thackeray. Raj Thackeray,
2: kyunki you know, kyunki Anand ji, kai log to ab ye kehne lage hain ki Sanjay Raut, Hamza Ali mazari hain BJP ke, ki jo log rukna bhi chahte hain na, wo उनकी दे के उनको बीजेपी के पास भेज देंगे। अच्छे खासे आपके एमपीज वहां बैठे हुए थे, उनको इतनी गाली दी कि वो छह जाके चले गए। बेचारे जो बचे रह गए वो भी अब सोच रहे हैं, पता नहीं कब संजय जी को सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा आएगा और हमें भी छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे ही उन्होंने जाकर के सीधे एट द टॉप शरद पवार को ही बुरा भला कह दिया। क्यों आनंद दुबे ऐसा क्यों कर रहे हैं संजय जी? कहीं वो ब्रह्मास्त्र तो नहीं है बीजेपी का?
4: पद्मजा जी नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। पद्मजा जी, संजय राउत जी को कोई जमील मजारी कहता है, कोई मुझको जमील हमजा कहता है, ये सब कहते हैं लोग, क्या करें? हम लोग तो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के एक वर्कर हैं। संजय राउत जी की कल की जो बात थी वो आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वो दोस्त अगर उस दुश्मन से जाके मिले जिससे हम बहुत नफरत करते हैं तो कहीं तकलीफ होती है। अब चूंकि संजय राउत जी कई बार कह चुके हैं कि शरद पवार साहब मेरे पिता समान है, मेरे वरिष्ठ हैं, गुरु समान है, तो आदमी भावनाओं में बहता है। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी गलत है, लेकिन जब संजय राउत जी की और सुप्रिया सुले जी की बात हो गई, सुप्रिया जी ने कहा नहीं संजय दादा ऐसी कोई बात नहीं, तो आज उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा एक गुस्सा था जो मैंने बोला, अब मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मैं शांत होता हूं। देखिए पद्मजा जी, राजनीति में मिलना जुलना कोई नई बात नहीं, सब सबसे मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है
2: तो आपने गुस्से में आकर के खुद शरद पवार को कह दिया कि he has no credibility।
4: नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक छोटा जब बड़े के सामने आकर कोई भावनात्मक ढंग से अपनी व्यथा गाता है तो बड़ा भी उसे माफ करता है। हमें पूरा विश्वास है आदरणीय शरद पवार साहब ने एक भाई समझ के उनको माफ कर दिया, वो विषय वहीं समाप्त हो गया। okay. संजय राउत जी ने भी कह दिया, सुप्रिया ताई ने भी,
2: विषय समाप्त हो गया। आर यू एब्सोल्युटली श्योर विषय समाप्त हो गया?
4: यस, ये
2: विषय समाप्त हो गया। वरुण सिंह वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड, देन आई ब्रिंग इन सिद्धार्थ यादव एंड सीमा मलिक। यस,
3: या नो, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, आनंद जी इज डिपेंडिंग संजय राउत लाइक एनीथिंग। लास्ट टाइम व्हेन ही अब्यूज्ड द एमपी, ही वाज लाइक वो भावनाओं में बह गए। when he says something against the Sharad Pawar, Bhavna mein beh gaye. Arey bhai, the politician is supposed to be mature. He has been a Rajya Sabha MP for more than 2-3 times. He is supposed to show

0: people not angry in the Shiv Sena faction? Where are people not angry? In a Congress, you have a Rahul Gandhi. In TMC, you have an Abhishek Banerjee. Here, you have an Aditya Thackeray. Then you have a Supriya Sule. Wherever you go, no leader who has been working for decades for any such party can come to the forefront as someone, a bhatija, a daughter, a shehzada, someone from the family sitting on the top. What do you do? Mm. Is this healthy for the parliamentary democracy? Is what I ask tonight.
1: Dr. Seema,
0: leave everything aside. This is not for the BJP to blame. Mm. I'm sorry.
1: Everybody is angry with dynasty in the party, including yours. And BJP is sitting there for anger management.
2: See, nobody is angry. If you're talking about my party, I can't listen to you, frankly. But if you're talking about my party, I think there is nobody who is angry with us. All our MPs are with us. They come and regularly meet our big leaders, and they plan the strategies and everything. And there's no resentment in our party. I must say this.
1: But Prithviraj Chavan is saying that six MPs are very upset.
2: I just want to put my point.
1: Prithviraj Chavan said that six of your MPs are quite upset, Seema ji.
2: Who?
1: Prithviraj Chavan.
2: They always say like this. Nobody is upset in our party. I'm talking about my party. Nobody's upset or something. All our MPs are with us. You know, and we are not going to join the NDA or something. These rumors are going on since 12 years.
1: But why are your friendly parties then spreading rumors about you, Seema ji? Prithviraj Chavan is on your side. Why is he spreading rumors about unrest in your party?
2: TV channels. There is no truth in this. I can't listen
3: Padmaja
2: to
3: ji.
1: You. Okay, Anand Dubey, let's try and fix Dr. Imam Malik's line, please. Haan, bataiye Anand ji.
3: Prithviraj Chauhan ji, antarrashtriya star ke neta hain. Unhone kuch mahine pehle kaha tha ki Pradhan Mantri Modi ji apne kursi se hat jayenge. Bahut bada bhukamp aayega. Koi Epstein file khulegi. To hum log bahut jagrukta, saavdhani se sab dekh rahe the. Aisa to kuch hua nahi hai. अब वही पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे हैं कि कुछ एमपी अस्वस्थ हैं, भाग जाएंगे. फिर हम सावधानी से देख रहे हैं, फिर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. ये राजनीति में बोलना, कहना, ये सब चलता है. हम लोग राजनीतिक जीव हैं, हम लोग बिना बोले रह नहीं सकते. सिद्धार्थ यादव जी की पार्टी देखो, कितने प्यार से हमारे झगड़े को देखती है. शरद पवार जी की पार्टी, शिवसेना आपस में नोकझोंक कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी सिद्धार्थ यादव जी करेंगे. क्यों? नजर बनाए हुए, आपदा में अवसर. ये मछली पकड़ने वाले हैं, हम मछलियां हैं. इनके कांटे में आ गए तो पकड़ लेंगे, नहीं आए तो मुंह बना के चले जाएंगे. ये सब राजनीति में चलता है और हमें ये स्वाभाविक
1: लगता है. तो आपकी मछलियां इनके डाले हुए दाने की तरफ जाती क्यों है भाई? अपनी मछली को आप अपने तालाब में रखिए ना.
3: अब मछलियां हैं वो चली जाती हैं, क्या करूं मैं? मछलियों को इतना समझा पाते तो बीजेपी को नहीं समझा लेते.
1: देखिए आनंद दुबे जी, he's become philosophical since 2024. He's become more a philosopher than a politician. He's like, होता है, जो होता है उसको हम रोक नहीं सकते. मछलियां हैं, मछलियों का तो नेचर ही है कि वो दाने की तरफ जाएंगी. और आप वहां बैठे होते हैं सिद्धार्थ यादव, देखिए. और जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, एट द एंड ऑफ द डे सिद्धार्थ यादव doesn't have anything to say about the NCP or Shiv Sena. His only question is, where is Rahul Gandhi? Because all the problems need to be solved by Rahul Gandhi. Siddharth Yadav.
0: Padmaja, ab Anand Dubey ji khud kaun si wali machli hai unko pehle clear karna chahiye. But when you don't have any success in electoral politics, to philosophy nikal kar aati hai, unki bhi wahi nikal ke aa rahi hai. But I ask you this question. What is he saying about Prithviraj Chauhan? अब ये अलायंस पार्टनर है उनके, एंड देन पीपल एक्सपेक्ट कि इनको सीरियसली लिया जाए. कौन लेगा इनको सीरियसली? इनके अलायंस को कौन सीरियसली लेगा? व्हाट इज लेफ्ट इन देम दैट एक्चुअली को जो सब्सटेंस किसी देश के नागरिक को लगेगा? क्या लगेगा इनको देख करके? ऑल ऑफ देम दे से दैट वी आर एन अलायंस, वी आर वर्किंग टुगेदर, एंड यू गिव देम अ मोमेंट एंड आनंद दुबे जी विल डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ देम. अभी आप इनको थोड़ा सा मौका दीजिए, राहुल गांधी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे. मेरे को नहीं कहना पड़ेगा
3: जी,
0: बिकॉज द सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज ऑल दीस पार्टीज हैव कम टुगेदर.
3: आदमी सीरियसनेस वहां रहेगा ना जहां उसको सीरियसनेस रखा जाएगा. इतनी बार इन्होंने हमारा किडनी लीवर तक निकाल लिया है पार्टी के. अभी सुन रहे हैं कि ऑपरेशन 3 होने वाला है, ऑपरेशन 4 होने वाला है, ऑपरेशन 5 होने वाला है. एक तरफ क्या होता था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति होते थे, वो कहते थे चिमटे से नहीं
0: छूगा.
3: आज वाली बीजेपी कहती है चिमटा तो छोड़िए, पूरा कुकर ही ले लूंगा. तो ये बीजेपी बदल गई, जब बीजेपी बदल गई मछली पकड़ने वाले बदल गए, फिर मछलियां भी बदल गई, फिर चारे भी बदल गए, क्या करें, हम लोग बेचारे हो गए। आज लोकतंत्र में जो अच्छा आदमी आनंद दुबे जैसा वो नहीं जी सकता,
0: अरे आप
3: वो नहीं आगे बढ़ सकता,
0: नहीं मान रहे, मछली नहीं, मानने लग गए,
3: नहीं जा सकते हम आगे,
0: कैसे भला होगा,
3: हमारे पास साधन,
0: आप नेता है कि मछली है,
3: हमारे पास वो शक्तियां नहीं है,
0: आप मछली है,
3: अरे क्या मछली तो भगवान के अवतार होते हैं, मत से अवतार
0: छोड़िए, शक्तियों को और संसाधनों को, हम हमने 50 साल विपक्ष में काम किया है,
3: मत करिए ऐसा, मछली देवता का तो अपमान,
0: हम तो नेता ही थे, जनसेवक थे, आप मछली बन गए 10 साल के अंदर ही, क्यों बने,
3: आपने हमें, आपने कांटा डाल डाल के फंसा लिया है, क्यों करते हो, हमें तैरने दो, हम जल में जीना चाहते हैं,
0: कांटा तो मछली
3: जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, आप बाहर निकालोगे मर जाएगी,
0: कोई दाना नहीं चाहिए, कोई कांटा नहीं चाहिए,
3: आप ऑपरेशन बंद कर दो, भारत की राजनीति वाली
1: मछली है। यू नो, ऑन अ सीरियस नोट, टू थिंग्स, वन, देवेंद्र फडणवीस, एंड आई वेरी रेयरली हर्ड हिम बी सो अनइक्विवोकल अबाउट समथिंग, ही सेड नोबडी फ्रॉम एनसीपी शरद पवार इज गोइंग टू बी जॉइनिंग अस, वी हैव नॉट रीच्ड आउट टू एनीवन, वी डोंट वांट एनीवन from NCP Sharad Pawar to join our party, but despite that, and I want you to listen into what Rohit Pawar said, वैसे आप बार बार मछली कह रहे हैं ना, आपके मछली बनते ही बीजेपी कहीं अर्जुन ना बन जाए, कि बिल्कुल मछली की आंख में अपना वो तीर मारने के लिए तैयार हो जाए, but okay, let's listen into what Rohit Pawar said.
4: लेकिन definitely दिल्ली से या महाराष्ट्र से हमारे जो सांसद है, MPs है, उनको कॉन्टैक्ट हो सकता है या हो गया होगा, लेकिन कुछ भी होने के बाद हमारे लोग जब डीलिमिटेशन कायदा का मतदान होगा तब वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और वो डीलिमिटेशन कायदा के खिलाफ वहाँ पे वोटिंग करेंगे, ऐसे कोई भी आपको केस नहीं दिखेगा जहाँ पे वो एब्सेंट है या नेगेटिव वोटिंग, वो डीलिमिटेशन के बारे में, मतलब डीलिमिटेशन के फेवर में कोई वोट करने वाला आपको हमारा MP वहाँ पे नहीं दिखेगा।
1: ओके, सो वरुण सिंह, very clearly at least Rohit Pawar is indicating this is not just a storm in a teacup, people have been contacted.
5: You know, to be very honest, let me tell you, there's a very famous saying in Maharashtra that whatever Sharad Pawar says, he doesn't do, and what he does, he never says. So whatever it is being said, so for example, if Rohit Pawar says that his MP won't vote, it may change tomorrow, because Sharad Pawar is known for, you know, saying and doing something else. And let me be very clear. No, I'm just like, you know, Anand Dubey has accepted defeat to an extent that he and his party cannot overcome the simple fact that they were the same party. For example, Sachin Iyer. Sachin Iyer was an NCP MLA. He jumped to them. And they, at that time, those people who come into them are honest and they are not called at that. And Mr. Yadav keeps on saying that everyone in other party are unhappy. 8 second, Padma. Yesterday they declared the list, or today they declared the list of 3 MPs from West Bengal. Hmm. All the 3 MPs on BJP ticket are non-BJP leaders who jumped the ship just few days ago. Aren't people in the BJP unhappy with that? So every political party, to be very honest, while they might be taking in leaders from other party and awarding them, that is what the same scenario is happening in across all the political parties. I don't see any political party any different from other political party who are not poaching onto leaders from other political parties.
1: Okay.
5: And what we just saw in Bihar right now, just a moment. We just saw in Bihar, candidate who is given a candidature, he's taking it back based on saying that his family, I'm saying, this also goes on to show that Bankipura, one of the most important seats from when Nitin Naveen was the candidate earlier, was an MLA earlier, when they had to select a candidate, it goes on to show multiple things. You know, I don't know, I'm not a politician to say this, but when I read it as a student of politics, it comes to me as if like the BJP at this moment, at this stage, appears a bit ill-prepared when it comes to smaller elections or elections as such.
1: Okay, and I will give the final word on that to Siddharth Yadav. Siddharth Yadav, it's great to have problem of plenty as long as it doesn't tip over into chaos, which is what Varun Singh is warning you about. It may just end up being chaos. Sabko aap le to lenge, karenge kya unka?
0: But Padmaja, I could not understand the extension of the argument to Bankipur, because the candidate which is fielded in Bankipur is a long time BJP worker who has worked from mandal level, booth level in Yuva Morcha, long time. We are one party who always respects its own cadre. We are one party who can get a Rashtriya Adhyaksh from
1: who's been a serving MLA. First you gave the ticket to one person and then you changed him within 3 days. Why?
0: Now, And that's a party decision. Padmaja, one has to understand that we are a cadre-based party. We take decisions based on our cadre. The cadre elects who the candidate should be. The cadre elects who the leader should be. Isme, matlab, isme abhi ko bhar wala to nahi aaya.
1: Sir, Abhishek Sinha bhi aapka cadre hi tha na. Abhishek Sinha bhi ABVP se hi uth karke aaye the. Abhishek Sinha kaun sa NCP se aaye the?
0: नहीं तो हमारे कार्डर में से हमको चुनना है ना पद्मजा, तो हम डिसाइड करेंगे कौन होगा कार्डर में, तो बहुत लोग हैं इतना तो द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज एब्सोल्युटली नॉट कि इतने सारे लोग हैं तो अब सबको चुनाव लड़ाना पड़ेगा नहीं तो लोग दुखी हो जाएंगे बिकॉज पीपल हु वर्क इन बीजेपी वर्क विद द इंटेंशन ऑफ सर्विंग द नेशन
1: नॉट गोइंग टू आई एम गोइंग टू हैव टू लीव इट एट दैट आई सस्पेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू वी शुड बी डूइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर बिकॉज देयर आर मेनी मेनी लेयर्स टू व्हाट इज हैपनिंग बट when it comes to the defections we are seeing across states, some possible defections, again tomorrow you Charanjit Singh Channi in Punjab who has asked for a meeting with the state in charge, Bhupesh Baghel. There is discontent, discord in the opposition, but is the BJP also inviting trouble by effecting so many crossovers? We'll have that discussion at greater length. For the time being, thank you very much, all gentlemen and ma'am, for joining us on Debate One. Moving on now to the storm over the film Satluj, which is only growing bigger with every passing day. The film, which was taken off OTT platforms, is now being screened across villages. In fact, the Akali Dal and other groups are also organizing these screenings inside Gurudwaras. The problem is now, what does one do with this film? Has this ended up exacerbating some of the divisions that existed in the state along sectarian lines for a good two decades? Punjab is back to normal, but is someone now trying to reignite those fires? The entire country is now talking about Satluj, but where does this controversy go from here? Joining us is somebody who's been very vocal and very upfront, somebody who in fact has personally suffered the blowback of what the state of Punjab witnessed in the 80s and the 90s. MOS Railways, रवनीत सिंह बिट्टू इज जॉइनिंग अस. रवनीत जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने बहुत स्ट्रांगली बोला है अगेंस्ट दिलजीत दोसांझ, आप उनसे नाराज क्यों हैं? वो तो कह रहे हैं कि हक है ना हमें पिक्चर बनाने का, आप उनसे इतना गुस्सा क्यों है? आप उनको इम्पोस्टर फ्रॉड क्यों बुला रहे हैं?
6: नहीं, पहले तो आपका शुक्रिया आपने, क्योंकि जो जो इससे इफेक्टेड हैं उनका जो व्यू पॉइंट आना जरूरी है, थैंक यू फॉर दैट. मैं दिलजीत से ज्यादा या कम, उनसे कम गुस्सा है, पर ज्यादा जो, क्योंकि जो हनी त्रिहेन है वो भी पंजाब के हैं जिन्होंने बनाई है और अमृतसर से हैं. मैं सबसे पहले, क्योंकि रिकॉर्ड और फैक्ट्स हमेशा, और आपका नेशनल इंटरनेशनल चैनल है उसके ऊपर फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं वो, और इसको मैं चैलेंज करूंगा, और अगर कहीं भी मेरे फैक्ट गलत होंगे तो मैं अपॉलोजी करूंगा आपके सामने, और मैं माफी मांगूंगा भी मैंने ये फैक्ट्स आपको गलत दिए थे. मैं कहीं भी नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर भी सारा डाटा है जहां से ये पैसा मिलता है, या और अगर कहीं भी 25,000 जो इन्होंने अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की बात की है, अगर वो डाटा सच है तो मैं पहले तो चैलेंज करता हूं भी वो 25,000 जो डाटा फैब्रिकेट किया है उसको, उसकी लिस्ट आपके सामने दिखाएं, देश के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, और जो इनकी बातें कर रहे हैं उनके सामने रखे. 25,000 तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं 5,000 का डाटा ही, उससे नीचे भी मैं बाद में बताऊंगा, 5,000 का भी कोई डाटा इनके पास है तो ये मीडिया में रखें, अपने कमीशन के आगे रखें, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रखें. ये बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट में डाटा नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर कमीशन. सेकंड, दिलजीत दोसांझ, और ये जो है इन्होंने गुस्से की बात है, हर पिक्चर बनाता है ठीक है, अरे भाई सेंसर बोर्ड है, आप उसके थ्रू आ रहे हो, आप कोर्ट्स में गए हुए, आप एक ओवर द टॉप जो उसके ऊपर जिसके ऊपर आपने पिक्चर डाली और वहां से बाहर बैठ के विदेश में, यहां कोई नहीं है ना इंडिया से इनको लेना देना है, अब्रॉड बैठ के ये कह रहे हैं भी इसे जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने भी वो सुना है, देखा है, और ये साथ में कहा पद्मिता जी भाई दो दिन के अंदर अंदर ये पिक्चर जो है इसे कोई ना कोई, मतलब सीधा उनका बात था भी इंडियन स्टेट या एजेंसी से इसे उतार देंगी। वो क्यों ये उन्होंने पहले ही बात की, क्योंकि उनके मन में क्या शक था, क्या चोर था। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कहने वालों को भी पता है, सेंसर चैनल्स के ऊपर है, सिनेमा के ऊपर है, लेकिन ओटीटी पे ओवर द टॉप जो कोई भी किसी तरीके का वहां पे गवर्नमेंट का जो बीजेपी को ये कह रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। वहां पे इन्होंने 199 की ये पिक्चर को सेल किया, साथ में जी वालों ने, जो जी 5 वाले हैं पता नहीं उसमें क्या वो अपनी बात रखेंगे, पर उन्होंने साथ में ही 495 के बीच में ये पैकेज रखा भाई, इसमें आपको वर्ल्ड कप का जो है वो पैकेज भी 300 में बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो क्या ये चीज थी, क्या मजबूरी थी, क्यों उन्होंने डाली, क्यों उन्होंने उतारी, ये बात तो वो बता सकते हैं। लेकिन यहां से एक ऐसी बात उठी भाई ये बीजेपी ने बंद करवा दी, बीजेपी मतलब सरकार ने बंद करा दी, तो एकदम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ढिल्लों पंजाब के, ही हैज रिटन अ लेटर टू अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे आईबी के मिनिस्टर हैं, इंडियन अपने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने उसके बाद इसके ऊपर कमेटी बनाई भी ये पता तो लगे भी कैसे पिक्चर डली, कहां से हट गई, इसके ऊपर उन्होंने उल्टा इंक्वायरी बात की है। पर
1: दिलजीत दोसांझ हैज सेड दैट लुक दे साइलेंस अस इन 1995, दे आर ट्राइंग टू साइलेंस अस इन 2026 एंड द ट्रूथ मस्ट गेट आउट दैट यू हैव मिस्टर खालड़ा हु वाज एन एक्टिविस्ट हु वाज killed in this brutal fashion only because he was highlighting these enforced disappearances, and the government of India is trying to silence us even today like they did in 1995. To wo haq ki awaaz utha rahe.
6: Agreed. Bilkul Khalra ji ki picture banayi, dikhayi. Ab meri ek request hai unse, Haneet Rehan ji se bhi, aur bade bade jo director hain, Kashmir files bani, Kerala file bani, aur ab iske upar Punjab ke liye bhi meri request hai unse. मैं ये नहीं कहता कोई मेरा उनसे मेरा हक है, जैसे उन्होंने ये बनाई एक फिल्म, एज ए इंडियन भारतीय होने के नाते उनकी दूसरी ड्यूटी भी बनती है भी यहां जो इसके कारण एक बैकलैश, एक यंगस्टर्स में गुस्सा आ गया वन साइडेड दिखा के, एक पिक्चर वैसे होती तो आपने इसको रियलिटी कह के बनाया भी, ये रियलिटी है। अब मैं आपके सामने रखूंगा भी इसके ऊपर भी वो जरूर पिक्चर बनाए, ये कोई वैसे ही मैंने छापे हुए अखबार नहीं है, ए 125 पैसेंजर्स मैसेकर्ड, ये जो लालड़ू के पास पंजाब में हुआ, 125 लोग, इसके ऊपर भी पिक्चर बनाए। उसके बाद आपको मैं एक और आपको हैरान करने वाली बात है, एक यंग आईपीएस ऑफिसर जिनका अविंदर सिंह, ही इज अ गुरसिख गाय, ये एक गुरसिख नए आईपीएस ऑफिसर थे जो पटियाला एनआईएस में, जो अपनी वहां पे मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे एनआईएस में, और ये एसएसपी पटियाला थे, इनकी वाइफ आईएएस ऑफिसर थी, इनकी बेटी 1 साल की थी, 3 साल का इनका बेटा था, कभी इनकी फैमिली में पूछा जाके इनका क्या हाल, कैसे इन्होंने जिंदगी बतीत की, क्यों, क्योंकि ये देश की बात करते थे, नेशनलिस्ट थे और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, इनके ऊपर कभी आपको रहम तरस नहीं आया। इनकी दाढ़ी भी वैसी है, इनकी भी पगड़ी वैसी है, ये सिर्फ आईपीएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, इसलिए आपने पिक्चर की इनकी बनाई इन लोगों की, ये सच्चाई है, आपने पिक्चर बनाई इन लोगों की। खालड़ा साहब मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छा काम किया, पर इनकी आइडेंटिफाई क्यों की बॉडीज के लिए, जो AK-47 डालते थे, ये इनकी इनकी आइडेंटिफिकेशन ही क्यों की, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों की, और आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद ये बस मैसेकर टोल 40, ये बटाला में 40 पीपल, उनके परिवार में कभी देखा भी उनकी विधवा क्या ख्याल है।

0: उनकी माँ का क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है? नहीं। उसके बाद ये एक अमृतसर के गांव में, मैं मतलब कितनी इनकी किसी को याद तरस नहीं आया, इनकी कभी इनको याद नहीं आई भी किस तरीके ये लोग मारे गए। इनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनेगी। चंडीगढ़ में रामलीला में किस तरीके से आके मार दिया गया, किसी को कोई इनका फिक्र नहीं है। तो ये लोग, और इन्होंने एक और फैक्ट, मैं बाकी भी बात करूंगा, ये इन्होंने बोला है भी, विटनेस इन खालरा मर्डर हु हैड बीन टर्न हॉस्टाइल
1: नहीं, पर
0: अलाइव।
1: क्योंकि आपने उस पिक्चर की बात की, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हमने एक सब्जेक्ट बनाया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई सोच समझ के कोई वन साइडेड ही दिखाया है, वी शोड एवरीथिंग दैट जसवंत सिंह खालड़ा वॉज डूइंग, आपको ये सब अगर मैसेकर्स दिखाने हैं आप पिक्चर बना लीजिए, हमारी पिक्चर मत रोकिए।
0: नहीं, हमने कहां रोकी पिक्चर? तो पिक्चर तो उन्होंने जो आग लगाने की कोशिश उन्होंने की, और बोला क्या,
1: आप कह रहे हैं
0: और
1: जानबूझकर को
0: आग,
1: रिलीज किया गया आग लगाने के लिए, कौन आग लगाना चाहता
0: बिल्कुल बिल्कुल वन साइड। देखो फिर दूसरी साइड क्यों नहीं दिखाई? एक एक मैं कह रहा हूं, बिल्कुल जिन पुलिस वालों ने गलत काम किए, आई थिंक मोर देन 127 केसेस हैं जो सीबीआई ने, वो भी तो इंडियन एजेंसीज हैं,
1: है।
0: जिन्होंने पिकअप किया। और आप हद हद ये है, आप में मेरे ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी उसमें आप दिखा रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर 31 अगस्त, 31 अगस्त को उनका असैसिनेशन हो जाता है, और उस टाइम तक खालरा साहब जसवंत सिंह खालरा जी को कभी पुलिस ने कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कभी उनको उठाया नहीं गया जब पीक ऑफ टेररिज्म था। मेरे ग्रैंडफादर 31 अगस्त को वो उनका असैसिनेशन हो जाता है, 6 सितंबर को जो कोड किया है उनको पुलिस ने उठाया, और अक्टूबर में जाके वो उसमें पिक्चर में बताया गया है भी उनको मार दिया गया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कौन से मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, ये देखना किसका काम है? आप बात एकदम हर चीज उसमें फैक्ट के बाहर, और जो दिलावर सिंह दिखाया ह्यूमन बम, उसकी बात की जोड़ी गई है, क्यों ये फैक्ट इतने बड़े गलत दिखाए? वो तो मेरे ग्रैंडफादर से संबंधित है। जो दिलावर सिंह था वो एक अलग एसपीओ था, उसका कोई भाई नहीं मारा गया था, कोई उसका गांव ने जसवंत सिंह खालरा से नहीं जुड़ा हुआ था, वो तो अलग एक चीज थी, उसको उससे जोड़ दिया गया भी उसने वहां पे ये किलिंग देखी और आके वो ह्यूमन बम बन गया। और जो उन्होंने कहा है इसका, ये जिंदा आदमी है, इसका नाम उन्होंने अलग पिक्चर में कुछ रखा है,
1: उस
0: जो उनको खाना खिलाया था जिसने भी, उसको भी मार दिया गया, पिक्चर में दिखाया गया है केयर सिंह,
1: क्योंकि आपने
0: ये
1: अपने दादाजी
0: अलग।
1: की बात की है, ऑन अ पर्सनल नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत से लोगों ने इस पर एतराज भी किया है दैट देर इज ऑलमोस्ट ग्लोरिफाइंग म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड व्हेन द असैसिनेशन ऑफ सरदार बेअंत सिंह जी इज शोन देयर, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट ऑन अ पर्सनल नोट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज यू नो समबडी हु इज इन द बीजेपी अ मिनिस्टर, बट एज अ ग्रैंडसन हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सीन?
0: देखो बंदना जी, कई बार बहुत बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। हम लोगों ने तो सब कुछ इस देश के लिए खोया, और एक ही चीफ मिनिस्टर है जिसने जम्मू कश्मीर में, बहुत हालात ऐसे रहे, गवर्नरी रूल रहा, वहां पे फौज लगी, यहां पे सरदार बेअंत सिंह जी लोगों के इलेक्टेड होके लोगों ने चुना, उन्होंने जो यहां पे किसी की बरात नहीं चढ़ती थी पंजाब में, अगर कोई बरात लेके जाता था घोड़े पे, उसे उसके साथ उसी गांव के जो पौंड छप्पड़ बोलते हैं, उसे उसमें वहां पे उसका मुंह काला किया जाता था। और कोई, मेरी बहन, आप इस पे प्रोग्राम जरूर करना, उस टाइम के पुराने रिपोर्टर्स आपके सामने होंगे, जो मेरी बहन मेरी बेटी अगर वो अपनी मर्जी से सूट डाल लेती थी, जीन्स डाल लेती थी, अगर वो दो गुत्ते पीछे नहीं करती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, स्कर्ट, जहां ये तो बहुत ही दूर, सिर्फ एक ड्रेस थी हर स्कूल में पंजाब और चंडीगढ़ में, वाइट कुर्ता और साथ में ब्लैक कलर की सलवार,

0: केसरी चुन्नी, तालिबान का राज था यहां पे, आज वो चीजें बदल गई। मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आ गई 95 को, और आप आज अंदाजा लगा लीजिए 36 और प्लस 31, उसके बाद जो जनरेशन पैदा हुई है उसके मन में क्या आएगा। इन्होंने इस आग को जन्म दिया है, और यहां पे कोई ये पिक्चरों की बात करता है, मैं दिलजीत दोसांझ से पूछना चाहता हूं और हनी त्रेन से पूछना चाहता हूं भी, कोई उस टाइम पंजाब में थिएटर में कोई पिक्चर लगती थी, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट क्या पंजाब में खुला अखाड़ा, मतलब जैसे गुरदास मान गाते हैं जा कॉन्सर्ट। मैं शर्ती ये कहता हूं भाई, अगर कोई 80 से 92 पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री, मेरे ग्रैंडफादर ने धर्मिंदर, अमरीश पुरी जितने लोग से, तमस्सम, ये लोग जो पंजाब से जुड़े हुए थे, कोई पंजाब में पिक्चर नहीं, जो सबसे बड़ा हमारा धर्मिंदर के कजन थे वरिंदर, उनको शूट किया गया, और जिन्होंने प्रनीति जो एक हमारी एक्ट्रेस है, जिन्होंने एक चमकीला नाम की पिक्चर बनी जिसमें इन्होंने ही काम किया है, दिलजीत दोसांझ ने चमकीला, वो सबसे जिसने गंदे गाने गाए हैं, मैं कह नहीं सकता लेडीज के, हमारी बहनों के लिए, उसको भी उस टाइम उसने गाने गाए, वो माना नहीं क्योंकि बाकी सब रोके हुए थे, चमकीला ने और अमरजीत कौर ने एक दो कैसेट निकाली, उनको दिन में दोनों को मारा गया, टेररिस्टों ने मारा, और उनकी बॉडी लेने भी कोई फैमिली वाला नहीं आया, वो भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी सी थी। तो उसके ऊपर दिलजीत ने पिक्चर बनाई, पर उसमें दिलजीत ने ये नहीं दिखाया, चमकीला और प्रनीति ने ये नहीं दिखाया भी दोनों को किसने मारा, उसके ऊपर भी सच्चाई दिखाते ना भी चमकीला की, मैंने उसमें पैसे बना लिए क्योंकि उसमें 84 में पैसे बना लिए और बातें थी, इनके लिए सिर्फ इनकम है। और यहां मैं कह रहा हूं भी, मैं इसमें चैलेंज करता हूं जो आपके चैनल पे सुनेगा, अगर पंजाब में, और हमारे पे गुस्सा क्यों भाई, गुस्सा करना है तो लोगों कांग्रेस पे करो, जिस कांग्रेस ने, जिस इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने गोल्डन टेंपल पे अटैक किया, हमारे गुरुद्वारे ढाए, 84 में 84 जो हर जगह सिखों को मारा गया, हर देश के कोने कोने में मारा गया, उस चीज को आग लगी हुई थी, जो मेरे ग्रैंडफादर ने तो वो आग आके ठीक करी, उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने आके उसे ठीक किया और अपनी शहादत देती, उसके बाद पंजाब आज खुशहाल है, पंजाब आज तरक्की कर रहा है। पर आज फिर मैं इसलिए तड़फ रहा हूं भी, आज फिर 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं, 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं ये, और ड्रग्स के में,
1: तो आप कह रहे हैं कि ये दोबारा इसको एक तरीके से, फाइनली द वे पीस हैज रिटर्न टू पंजाब, उसको दोबारा एक तरीके से, देयर इज एन एफर्ट टू ट्राई एंड पुल इट बैक इनटू द पास्ट, बट हाउ डू यू स्टॉप इट, रवनीत सिंह बिट्टू, हाउ डू यू स्टॉप इट, बिकॉज इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज बीन पुल्ड आउट, इट्स बीइंग स्क्रीन्ड इन गुरुद्वारास, द एसजीपीसी टुक आउट अ मार्च टुडे, दे आर होल्डिंग स्क्रीनिंग्स इन विलेजेस, इन गुरुद्वारास, देर आर एलईडी ट्रक्स विच आर यू नो ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस द विलेजेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान, अब तो ये रुक नहीं सकती ना, कहीं इसमें बैन लगा के गलती तो नहीं कर दिया, अब आप एसजीपीसी को कैसे रोकेंगे?
0: मैं यही कह रहा हूं भी, बैन लगा ही नहीं, ये प्रोपेगंडा है, ओटीटी के ऊपर उन्होंने पिक्चर डाली, खुद डाल के खुद उतार ली, इसमें गवर्नमेंट का, बीजेपी का, मैं एक मिनिस्टर होने के नाते कह सकता हूं बिल्कुल कोई रोल नहीं है,
1: ये तो आईटी मिनिस्टर के कहने पे हटाया गया है, आईटी मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर इट टू बी पुल्ड आउट,
0: इसके ऊपर इंक्वायरी है जो वो मिनिस्ट्री ने करी है, बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं, बीजेपी तो यहां पंजाब में ना, यहां गवर्नमेंट में थी ऊपर, ना सेंटर में गवर्नमेंट थी, वो तो कांग्रेस है, उसे जवाब देना चाहिए भाई, ये हालात क्यों बनाए उस टाइम, क्यों सिखों के साथ ये हुआ, और अकाली दल जो कर रहा है, अकाली दल के लिए जो मेरे रिस्पेक्टेड मिसेज वाइफ ऑफ खालड़ा जी, उन्होंने आकर सीधा, आप उसको भी दिखा सकते हैं, बहुत चैनलों पर चला है, उन्होंने सीधा कहा कि 97 में हमें लगा था भी प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि वो अकाली दल के एक्टिविस्ट थे, अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी थे खालड़ा साहब, भाई बादल साहब को जब वो 97 में सीएम बने सारी फैमिली गई, हमने जाके कहा भी अब खालड़ा साहब के केस के बारे में देखिए, उन्हें ढूंढिए।

0: क्योंकि उस तक उस टाइम तक उन्हें पता नहीं था भी उन्हें मार दिया गया है। तो बादल साहब ने, अकाली दल ने जो ये ढोंग रचा है, उन्होंने कहा बीबा जी आप मिनिस्ट्री ले लीजिए, चेयरमैनी ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, बट खालरा साहब की बात मत कीजिए। ये उनकी वाइफ ने, और मैं एक और बात कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं उनके वाइफ रिस्पेक्टेड खालरा साहब के पे, मैं उनको जरूर मिलूं, उनके पास बैठूं, भाई जाने किसकी गई है, परिवार आपका मेरा और बाकी जो सारे हिंदू ऑफिसर पुलिस वाले और पंजाब भी सिख, और आज उसपे ऊपर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। जब वो जिंदा थे उनको आज तक जो कौमी शहीद जो एसजीपीसी फोटोज लगाती हैं दरबार साहब के साथ म्यूजियम में, कौमी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। चार बार उन्हें इलेक्शन लड़ाई गई, मिसेस खालरा को चार बार पार्लियामेंट और विधानसभा किसी ने मदद नहीं की, उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो हम कोशिश करेंगे
1: उनका इस तरीके से पॉलिटिकल उनको वेपनाइज किया जा रहा है,
0: वेपनाइज किया, और मैं कोशिश करूंगा जब वो बाहर से आए हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे, जिन्होंने दुख जे झेला है उस पंजाब की लड़ाई में, हम इकट्ठे बैठ के ये जो पॉलिटिक्स करते हैं उनका मुंह बंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी।
1: पर रणवीर जी ये बताइए कि जब आपकी आपका एक स्टेटमेंट है उसको बहुत एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, जब आपने कहा था कि भाई अगर आपको जसवंत खालरा जी पे बनानी है, पिक्चर बनानी है, अगर आपको ये पिक्चर बनानी है कि कैसे जो इनोसेंट सिख थे उनके ऊपर अत्याचार किया पुलिस ने, तो आप दिलवान बस मैसेकर पे भी बनाइए, आप लालुड़ू बस मैसेकर पे भी बनाइए, आप फतेहाबाद बस किलिंग पे भी बनाइए। तो ये एक तरीके से माहौल खराब कर रहा है, क्योंकि फिर से उस वक्त जो एक खाई थी या जो एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई थी सिखों और हिंदुओं के बीच में, उसको एक बार दोबारा, दोज क्रैक्स आर गोइंग टू बी रिवाइव्ड एंड दैट्स वेरी डेंजरस, इट्स प्लेइंग विद फायर।
0: नहीं पद्मिता जी बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुओं की बात अकेले नहीं कर रहा, हिंदू तो बेचारे मैं हम बैठे हैं हमारे जैसे लोग हिंदुओं को बिल्कुल उनकी रक्षा करने के लिए, मेरे दादाजी, हिंदुओं की बात नहीं है अकेली। जो ये मैंने आपको दिखाया, ये कौन, ये एसपी साथ में केपीएस गिल की किलिंग हुई, और ये कौन कह सकता है भी ये अकेले 22 डीएसपी मरे, और मैं अगले दिनों में आपके चैनल पे भी भेजूंगा, और मैं हर सिख के घर ही जाऊंगा जो किलिंग हुई है, हिंदू के घर नहीं जाऊंगा, ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन जो हर सिख मरा है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था पिछले लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ही 136 जो टेररिस्ट ने किलिंग की है अकेले लुधियाना में, वो सिख फैमिलीज हैं, हिंदू, और यहां ये लड़ाई नहीं थी, ये तो दिखाई जाती है। ये बस में उतार के जो मारे वो अकेले हिंदू थोड़ी थे, वो सिख हैं, उसमें भी पंजाबी हैं, एससी हैं। ये कोई अगर गलत बात करे, ये जलंधर स्टेशन पे ब्लास्ट हो गया, इसमें किसको पता था कौन सिख है, ब्लास्ट में कोई आइडेंटिफाई कर सकता है भी सिख है या स्टेशन पे। अभी जहां प्रधानमंत्री जी आएंगे
1: जी।
0: हम उसे जलंधर स्टेशन में उसे बना रहे हैं, स्टेशन पे रेलवे ब्लास्ट हो, इसमें कौन पता, कोई बिहारी था, कोई यूपी वाला था, कोई पंजाब वाला था, किसको पता है।
1: मेरे को ये बताइए कि दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड मेनी पीपल वर्क टू फाइनली गेट पंजाब टू वेयर इट इज टुडे, योर दादाजी वाज वन ऑफ देम, केपीएस
0: वो कोई हिंदू थे, वो तो सिख थे,
1: केपीएस
0: गिल कोई हिंदू था,
1: करेक्ट। केपीएस गिल के ऊपर भी अब बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, हाउ डू यू एनालाइज हिज लेगेसी, फॉर यू इज केपीएस गिल a butcher in khaki or a hero who got rid of militancy in Punjab? How do you evaluate his
0: legacy? Admiral ji, main is baat ka aaj KPS Gill jo the, wo Assam cadre ke officer the, Assam se yahan aaye gaye, laaye gaye kyunki Punjab mein DGP Rivero rahe, unhone bahut kaam kiya, par KPS Gill chale gaye, pehle kamyab nahi hue, phir dusri bar phir aaye, second term unko di gayi, बिल्कुल केपीएस गिल, जहां ये वो पहले भी थे, रिवेरो साहब उससे भी मजबूत थे, ये मारने से काम नहीं होता, अकेला भी गोलियां मार दी काम हो गया, नहीं, गवर्नरी रूल था, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने गवर्नरी रूल लगा के, मिलिट्री लगा के, कांग्रेस ने फौज लगा के देख लिया था, मार मार के, मारने से नहीं होता। जब सरदार बेअंत सिंह आए, उन्होंने पंचायत इलेक्शन करवाई, उन्होंने काउंसलर की इलेक्शन करवाई, उन्होंने नौजवानों को सिनेमा दिया, गाने वाले दिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाए, नौकरियां दी, इंडस्ट्री लेके आए, इंडस्ट्री वालों को प्लॉट दिए भी और इंडस्ट्री लगाओ। तो ये सारी चीजें हुई, ये पुड्डा जैसे नई नई मिनिस्ट्रीज बनी, ये अकेला मारने से नहीं हुआ। आप सोचो भी मारने से खत्म हो गए, नहीं, आप जरूर पंजाब आइए, यहां देखिए और स्टोरीज कीजिए भी किस तरीके से सरदार बेअंत सिंह और सारी पार्टी, चाहे वो कॉमरेड था कोई, चाहे बीजेपी वाला था, चाहे कोई अकाली दल वाला था, सबने मिलके काम किया। आज पॉलिटिकल और चीज है, आज और रोटियां सेकना चाहते हैं इसलिए ये चीजें हो रही हैं, नहीं, सब पार्टियों ने इकट्ठे होकर यहां लड़ाई लड़ी है।
1: थैंक यू वेरी मच रवनीत जी, थैंक यू।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा आकर मसाला।
13: We are over, Jimmy.
14: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
15: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
16: I'm delighted to be a chairing committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
17: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
18: I think it's also important that how they are reshaping the industries, commercial activities which they are into. And it's a very judicious mix of people to choose from. My compliments to the team.
15: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
19: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
20: The Shiv Sena Shinde Faction Corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
21: The thug you see is Shinde Sena Corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
22: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
23: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
24: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
23: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
24: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
23: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?

0: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
9: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ऑफ डोंबिवली। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। विल योर गवर्नमेंट इमीडिएटली अरेस्ट दिस राउडी रमेश म्हात्रे?
10: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
11: And joining me live from Mumbai is Ramesh Bhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
12: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
11: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर है आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप?
12: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
11: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर, अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
12: प्रशिक्षण हम हमारे
11: नहीं मांगेंगे
12: सर।
13: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
14: The fact that there is now suddenly a raging

0: पवार साहब हमारे सुप्रीम लीडर है महाविकास आघाड़ी के, हमारे नेता है। कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है। नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, यह हम मानते हैं। जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी। ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में। तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता।
1: नहीं, मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी, कुछ नहीं।
2: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
1: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है। एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम है, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे।
3: भाई शरद पवार जी विधान भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
1: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम्युनिकेशन, स्टॉर्म इन अ टी कप।
2: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने?
1: किसने बोला आपको? 1 मिनट भी नहीं मिला। वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले, छोटी सी, पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है।
4: राजनीति में, विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हाउस में, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है। लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम, केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था, एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी है, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी। तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ।
5: Through the journey of the JRC and NDTV campaign, Child Marriage Free India, we have brought you stories from India's villages and from the farthest, most remote corners of the country. Today, we turn our lens on India's cities. For every 2 girls married off in villages, 1 girl is married off in an urban space, an alarming reality that is echoed by the latest National Family Health Survey, or the NFHS-6. This is a crime which often exists within touching distance of our own lives. We take a look at the story from Pune, where a girl was saved from child marriage.
6: Every single day, lakhs of people arrive in our cities to chase their dreams and build their lives. Yet, within the folds of these concrete jungles, thrives the insidious reality of child marriage. More often than not, it impacts girls and women known to us, who occupy the same spaces as you and I, removed just a degree or two from our own lives. 16-year-old Vaibhavi is one such girl, living a stone's throw from the bustling IT hub of Pune city. She was on the verge of being married off to a 25-year-old man when she was rescued in the nick of time.
7: Actually, एक मेरी फ्रेंड है जो अहिल्या नगर में रहती है, तो उसने मुझे ऐसे ही कॉल किया था शाम के टाइम पे, और हमारी बात चल रही थी, तो उसने मुझको शेयर किया कि अरे मुझे ना हल्दी में जाना है करके। तो उसको मैंने पूछा किसकी हल्दी है, तो बोले नहीं, मेरी बाजू में ही रहती है एक लड़की और उसकी शादी है और उसका जो एज है वो कम है। तो उसको पता ही था कि मैं काम करती हूँ, और उसको ये भी पता था कि बच्ची की जो शादी है वो पूना में होने वाली है। मैंने मेरे एनजीओ को बताया इसके बारे में, और उसके बाद मैंने चाइल्डलाइन को इन्फॉर्म किया, CWC को इन्फॉर्म किया, और इनको इन्फॉर्म करने के बाद हमने वहाँ पर जो स्पॉट था वहाँ पर हम चले गए। वहाँ पर जाने के बाद हमारे साथ में चाइल्डलाइन का टीम था, और जैसे ही हमने इन्फॉर्म किया था कि वहाँ के स्थानिक जो पुलिस थे वो वहाँ पे थे, ग्राम सेवक था, BDO था, और देन और भी आंगनवाड़ी सेविका जो थी वो भी हमारे साथ में थी। हम लोग सब वहाँ पे पहुँचे, और बच्ची का जो एज था तो सबसे पहले हमने वो वेरीफाई किया, देन जो फैमिली थी उनको बताया कि बच्ची का जो एज है वो कम है।

0: तो ये चाइल्ड मैरिज होता है, और अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। तो उनका काउंसलिंग किया दोनों भी फैमिलीज़ का, और फैमिली को समझाया, देन वो समझ गए कि नहीं बाबा, कि हमें चाइल्ड मैरिज नहीं करना है।
1: The collective action of Child Helpline, the Gram Sevak, the Block Development Officer, Indapur Police, an Anganwadi worker and the local NGO, Committed Communities Development Trust or CCDT, a partner NGO of the Just Rights for Children Network, stopped the wedding before it could happen. As a result, no arrests were made. Today, CCDT continues to follow up regularly with Vaibhavi and her family to ensure her safety, education and overall well-being. Vaibhavi is still living safely at home with her family and is now preparing for her class 10 exams. Child marriage is a crisis thriving right inside our urban centers, fueled by migration, economic pressure and a lack of awareness and action on our part. Ultimately, child marriage is a crime and a grave violation of human rights, regardless of its geography.
2: ग्रामीण में तो केसेस वैसे आते हैं हमको, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरी भाग में नहीं आते। शहरी भाग से भी केसेस हमको आते हैं। शहरी भाग में भी जो भी वहाँ के जो ये है कम्युनिटीज़ वगैरह है, जो कि रूरल मतलब जो चाल वगैरह जो बोलते हैं, उस एरिया के भी लोग कैसा रहते हैं, उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, या फाइनेंशियली उनके इशू रहते हैं, उनको फाइनेंशियली वो बच्ची को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनको दिमाग में क्या रहता है कि बच्ची की शादी करवा दो, और जो है बच्ची की शादी करवा दिए तो उनके ऊपर से जिम्मेदारी निकल जाएगी।
1: Vaibhavi's story tells us that vulnerable girls can be protected and given a second chance at childhood when vigilant local communities and civil society networks work together. Each one of us can make a difference. Stay alert to the warning signs in your own ecosystem. Your one act of vigilance can rescue a life and save a childhood.
3: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: Two nations, one defining vision. From critical semiconductors and high-speed rail to

0: And the other news that we're tracking in from the state of Maharashtra is the big buzz over Sharad Pawar and Eknath Shinde's meeting. It was not about a bouquet of 15-minute chat and a room that had changed hands has sent Maharashtra politics in buzzing over Sharad Pawar's leaning. It all started on Wednesday when the NCP SP chief walked into the assembly for a meeting on the Maharashtra-Karnataka border issue. Shinde reportedly cut short a cabinet meeting and welcomed a veteran with a bouquet, spent 15 minutes with him in his office, and then here's where it gets curious. Pawar stayed back and held a meeting of his own party legislators. The timing of the meeting drew sharp reactions from ally Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, who asked, why did Pawar pick a traitor's chamber? Here are some reactions that are coming in on the top political developments that creating buzz in the state of Maharashtra.
1: Pawar sahab hamare supreme leader hai Mahavikas Agadi ke, हमारे नेता है. कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है. नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं. जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी. ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में. तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे. मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता.
2: नहीं, मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको कोई गलत खबर किसने दी थी, कुछ नहीं.
3: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
2: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है. एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे.
4: भाई शरद पवार जी विधान भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
2: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम्युनिकेशन, स्टॉर्म इन अ टी कप.
3: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने.
2: किसने बोला आपको? एक मिनट भी नहीं मिला. वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले. छोटी सी, पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है.
5: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते. हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं हाउस में, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है. लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था. एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी. हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी. तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ.
0: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.
6: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
7: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
8: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
9: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
10: Humko haq hamare party ke Balasaheb Thackeray ne diya, jahan bhi anyay ho.
9: Aap cooperator ho ya gunde ho sir? National TV par hain aap. क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
10: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है.
9: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे. क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
10: प्रशिक्षण हम हमारे
9: नहीं मांगेंगे
10: सर.
11: Had it not been for NDTV's coverage, none

0: car and greeted him with a bouquet of flowers. The two spoke for about 15 minutes. But the problem is that this conversation happened inside the Deputy Chief Minister's office, following which Pawar then went on to meet his MLAs as well inside Mr. Shinde's office. This 15-minute meeting triggered Team Uddhav and in fact triggered Sanjay Raut in particular, who lashed out at the 86-year-old leader and asked him what was the need to meet a traitor. 24 hours later, though, there was a dramatic shift in tone. Pawar was now called the Supreme Leader of Maharashtra. Now, with tensions palpable within the Maharashtra Vikas Aghadi, Supriya Sule stepped in to downplay the buzz, calling the entire episode a misunderstanding, a storm in a teacup. But then, this also came with a caveat, because Supriya Sule also said that all the party MPs will act together in whatever they do. The Congress, meanwhile, has also waded in. Prithviraj Chauhan has said that 5 to 6 MPs of Sharad Pawar are restless. The BJP has quickly seized on this remark and sought details of the MPs from Prithviraj Chauhan. The question is, why has one single picture triggered this nervousness in the opposition camp? The answer, perhaps, lies in what's unfolding in these other states, from Punjab to West Bengal, with defections and infighting being witnessed everywhere. But at a time like this, the BJP specifically is asking, when you have the opposition in a state of disarray, when there are problems, especially either in the Congress itself or in the Congress's alliance with other parties, why is Rahul Gandhi still missing in action? Listen in.
1: त्या गद्दाराच्या छताखाली जाऊन अशा प्रकारच्या बैठका घेणं ह्याच्यामुळे मोठ्या नेत्याची विश्वासार्हता ही कमी होते आणि घसरते, हे मत आहे. आम्ही कधीही गद्दारांच्या अशा ठिकाणी जाऊन आमच्या पक्षाच्या बैठका घेण्याचं एवढे आम्ही काय म्हणतात ते सहिष्णू नाही आहोत. ह्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता कमी होते. नाही, ते नाराज कल थे आज नाही. पवार साहब हमारे सुप्रीम लीडर है महाविकास आघाड़ी के, हमारे नेता है. कल हमारी भावना थी, हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है. एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं. जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी.
2: नहीं, कोई नहीं, सब मिस कम रही है. स्टॉर्म इन अ टी कप.
3: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने.
2: किसने बोला आपको? एक मिनट भी नहीं मिला. वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले. छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है एंड मीडिया ब्लोन. कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है. एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे.
4: तीन तीन प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, 5-6 सांसद एनसीपी शरद पवार ग्रुप के काफी हलचल में हैं, कुछ इधर उधर जाने की बात लोग कर रहे हैं. साथ ही में 3 पर्याय के लोग बात कर रहे हैं कि मर्जर इन कांग्रेस, पार्ट ऑफ एनडीए, कोई मंत्री बनेंगे उसके बाद, या फिर इश्यू बेस्ड सपोर्ट. तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा मेरे को कोई पर्सनल कोई जानकारी नहीं.
5: अगर ये इन्फॉर्मेशन माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब को है तो मैं लीड करके उनको जाके मिलूंगा. वो याद ही उनसे मेरे पास लेने के बाद मैं खुद जो कोई वो 6-7 MPs है उनको जाके विनती करूंगा कि आप एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में काम करें, इससे इसमें ही आपका भला है.
6: टुडे पंजाब कांग्रेस इज इन अ क्राइसिस इन अ कॉन्फ्लिक्ट मोड. On the other hand, Rahul Gandhi is on a holiday mode. The real question needs to be asked is, in all this episode, Congress episode, where is Rahul Gandhi? Has Rahul Gandhi been in the country for the past 20 days? Is Rahul Gandhi today in the country? The clear answer is no.
0: All right, let's take this across to the guests joining us now. We have Anand Dubey from the Shiv Sena UBT, Dr. Seema Malik from NCP Sharad Pawar, Siddharth Yadav of the BJP joins us. But reveal, what is the truth? Varun Singh, what's going on? Is the NCP Sharad Pawar splitting, joining the BJP, staying where it is? Why is Sanjay Raut so hurt, or is it a storm in a teacup? What are you hearing?
7: Oh, storm in a teacup itself explains what exactly Supriya Sule wanted to say And not only that,

0: Sanjay Raut, I don't know what exactly he's up to. One day he's very unhappy and the other day he's very happy with calling Sharad Pawar as the supreme leader. See, one thing is very clear. Not all of the leaders in the NCP Sharad Pawar camp want to join the Congress. That was floated, one of the ideas that was floated to them. And it is true that NCP Sharad Pawar, when if he wants to merge his party, he wants to be in power. He has been in power in the state for all these years. This is the first time in the last 10, 12 years that they have not been in power. The moment he wanted back power, he formed an alliance that no one had ever thought of. Uddhav Thackeray coming, Congress coming, while Congress and NCP were together. So his party and his leaders cannot stay without power. And somehow, after...
1: Are you Jalebi kyun bana rahe ho? Varun Singh, out of power, in power, are they joining the BJP or not? Sidha sidha bolo na, aa rahe ki nahi aa rahe?
0: Nahi, I don't think they are joining BJP. There are certain talks that are happening. But I doubt that they would join the BJP. They may
1: Sanjay Raut ko gussa kyun aata hai? Jab koi kahin ja nahi raha, sab kuch changa chal raha hai, to wo kyun gussa ho rahe?
0: See, Sanjay Raut ko har cheez pe gussa aata hai. A problem inka ye hai ki he gets angry even if... And he talks about, see, you know, he should maintain his calmness, which he cannot. He says that he and his leaders do not go and meet people who have abandoned them, but they go and meet Raj Thackeray. Raj Thackeray,
1: because you know, because Anand ji, kai log to ab ye kehne lage hain ki Sanjay Raut, Hamza Ali, Mazari hain BJP ke, ki jo log rukna bhi chahte na, wo unko gali de deke, unko BJP ke paas bhej denge. Achhe khase aapke MPs wahan baithe hue the, unko itni gali di ki wo 6 jaake chale gaye. बेचारे जो बचे रह गए वो भी अब सोच रहे हैं पता नहीं कब संजय जी को सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा आएगा और हमें भी छोड़ के जाना पड़ेगा. वैसे ही उन्होंने जाकर के सीधे एट द टॉप शरद पवार को ही बुरा भला कह दिया. क्यों आनंद दुबे ऐसा क्यों कर रहे हैं संजय जी? कहीं वो ब्रह्मास्त्र तो नहीं है बीजेपी का?
2: पद्मजा जी नमस्ते. सभी को मेरा सादर प्रणाम. पद्मजा जी, संजय राउत जी को कोई जमील मजारी कहता है, कोई मुझको जमील हमजा कहता है, ये सब कहते हैं लोग, क्या करें. हम लोग तो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के एक वर्कर हैं. संजय राउत जी की कल की जो बात थी वो आपको समझना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वो दोस्त अगर उस दुश्मन से जाके मिले जिससे हम बहुत नफरत करते हैं तो कहीं तकलीफ होती है. अब चूंकि संजय राउत जी कई बार कह चुके हैं कि शरद पवार साहब मेरे पिता समान है, मेरे वरिष्ठ हैं, गुरु समान है, तो आदमी भावनाओं में बहता है. इसका ये मतलब नहीं कि आदमी गलत है. लेकिन जब संजय राउत जी की और सुप्रिया सुरेश जी की बात हो गई, सुप्रिया जी ने कहा नहीं संजय दादा ऐसी कोई बात नहीं, तो आज उन्होंने कहा कि नहीं मेरा एक गुस्सा था जो मैंने बोला, अब मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मैं शांत होता हूं. देखिए पद्मजा जी, राजनीति में मिलना जुलना कोई नई बात नहीं, सब सबसे मिलते हैं. नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है तो
1: आपने गुस्से में आकर के खुद शरद पवार को कह दिया कि ही हैज नो क्रेडिबिलिटी.
2: नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक छोटा जब बड़े के सामने आकर कोई भावनात्मक ढंग से अपनी व्यथा गाता है तो बड़ा भी उसे माफ करता है. हमें पूरा विश्वास है आदरणीय शरद पवार साहब ने एक भाई समझ के उनको माफ कर दिया. वो विषय वहीं समाप्त हो गया. okay. संजय राउत जी ने भी कह दिया, सुप्रिया ताई ने भी.
1: विषय समाप्त हो गया? आई यू एब्सोल्युटली श्योर विषय समाप्त हो गया?
2: यस, ये
1: विषय समाप्त हो गया. वरुण सिंह वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड, देन आई ब्रिंग इन सिद्धार्थ यादव एंड सीमा मलिक. यस,
0: या नो, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. आनंद जी इज डिपेंडिंग संजय राउत लाइक एनीथिंग. लास्ट टाइम व्हेन ही अब्यूज्ड द एमपी, ही वाज लाइक वो भावनाओं में बह गए. When he says something against Sharad Pawar, वो भावना में बह गए. अरे भाई, politician is supposed to be mature. He has been a Rajya Sabha MP for more than 2-3 times. He is supposed to show sense of maturity. And to be very honest, he was till now NCP Sharad Pawar's Hamza Ali Mazari in Sushena. It was said that Sharad Pawar के pawn थे Sanjay Raut, जो Sushena को तोड़ना चाहते थे, break करना चाहते थे. He was the main curator of the MVA.
1: बताइए आनंद जी, भावनाओं में बहते बहते आपके बचे कुछ MLA MP ना बह जाएं BJP की तरफ?
2: प्रकरण पे सिर्फ यही कहना चाहूंगा,
1: ये बहाव पर थोड़ा रोक लगाइए.
2: जब समय थोड़ा अनुकूल या प्रतिकूल हो जाता है, समय हमारे थोड़ा सा खिलाफ नाराज हो जाता है, तो हमें कोई भी ज्ञान देता है और हमें हंस के सुनना पड़ता है. इसके लिए मैं सभी के ज्ञान पाठ सुनूंगा, मैं मौन रहूंगा, मैं आप लोगों की भावनाओं को समझूंगा कि हमसे क्या खता हो गई है कि आपकी बातों पे हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं. राजनीति में ताकत चलती है. आज राजनीति में हमारे पास ताकत नहीं है पद्मजा जी.
0: ताकत आप लोग क्या कर रहे हो?
2: नहीं है ताकत हमारे पास, छीन लिया है आपकी शक्तियों ने, आपने हमारा धनुष बाण हमारी गदा हमारे रथ सब नाम पहचान सब छीन लिया है, तो आपने हमें इस समय हमने आपने कमजोर और घायल कर दिया है, लेकिन घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ।
0: नहीं नहीं घातक तो आप लोग हो नहीं, आप लोग राजनीति छोड़ दीजिए अगर
1: घातक तो ठीक है सर, ये आपका घातक प्रहार आपके अपनी पार्टी पे ना हो जाए, सबसे बड़ा डर यही है, आप घातक किसके लिए है, घातक अपनी पार्टी पे घात मत कर दीजिएगा। एनीवे लेट मी ब्रिंग इन सीमा मलिक, डॉक्टर सीमा मलिक व्हाट्स गोइंग ऑन, संजय राउत इज नॉट कन्विंस्ड अबाउट योर इंटेंशंस।
3: No, I think we have convinced him. And basically, see, it was just a courtesy meeting. Everybody knows that it was a courtesy meeting.
1: And the
3: long-standing culture of this is a long-standing culture of this is a long-standing culture of Maharashtra.
1: But Sanjay Raut is saying that when somebody is a gaddar, you don't extend any courtesy to gaddars.
3: But Sanjay Raut, sir, ma'am, Sanjay Raut is like a big brother to us, and as Supriya ma'am also said that he is like a big brother to her, and this was, I think this was some overreaction from him, and you know, a misunderstanding only, and I think he will understand. So I will only say that we respect him and for this, and he, I think he will understand with the time, and I think he said understood.
1: But they say Siddharth Yadav, there is no smoke without fire, you know. And Sanjay Raut is a very perceptive man. Unko pehle hi pata chal gaya tha kaun gaddar hai aur kaun asli hai.
3: See, Pawar Sahab is a very senior leader, and everybody respects him. And that also, Mr. Shinde also said that it was a real pleasure that he came to his room or something. So I think
1: it was a pleasure for the two people who met, like, you know, but it wasn't very pleasurable for the others who were watching.
3: Nothing.
1: Siddharth Yadav, there is no smoke without fire. Why are you constantly creating trouble between the remaining friends? ऐसे ही बहुत कम लोग बचे हैं जो आपस में दोस्त हैं. उनमें भी आप जाकर के यू कीप क्रिएटिंग, यू नो, यू कीप क्रिएटिंग मडिंग द वॉटर्स फॉर देम, व्हाई?
3: सिद्धार्थ
1: यादव,
4: पद्मजा, आई डू अग्री, देयर इज, पद्मजा, आई डू अग्री, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बट पीपल लाइक संजय राउत आर फायर देमसेल्व्स एंड दे सेट फायर टू देयर ओन हाउस. व्हाट डू यू डू विद दैट? Who is asking Sanjay Raut to come out and give such statements? Who is asking Sanjay Raut to come and bash their own MPs, their own leaders? Who is asking him? Now, Abhi,
1: you provoke him, no? You go and provoke him. You keep posing all these pictures and you post these pictures deliberately. You are trying to provoke Mr. Raut.
4: Padmaja, this is very convenient to say. The reality in parliamentary democracy is that every party has to work really hard. All leaders have to work very hard. You have to be answerable to the people. You have to be answerable to the cadre. You have to work on ground. People like Sanjay Raut, who are just, you know, making the inner circle of the family happy, and pushing people like Aditya Thackeray in the forefront, and doing that, you know, the kind of fan following that, you know, he tries to build around him, which is not reciprocated in the people, neither in the cadre. This is the specific reason why leaders are getting angry, not because of BJP. You take TMC, you take Shiv Sena, you take any faction. When you try to push incompetent people to the forefront, leaders who have been with you for decades will lose your hands.
1: So you're saying that people in the NCP are angry? You're saying people in the NCP are angry?
0: What?
4: No, people and everybody.
3: Are you asking?
4: And in every party.
3: Frankly.
4: Are people not angry in Congress? Are people not angry in TMC? Are people not angry in the Shiv Sena faction? Where are people not angry? In a Congress, you have a Rahul Gandhi. In TMC, you have an Abhishek Banerjee. Here, you have an Aditya Thackeray. Then you have a Supriya Sule. Wherever you go, no leader who has been working for decades for any such party can come to the forefront, because there's someone, a bhatija, a daughter, a shehzada, someone from the family sitting on the top. What do you do? Is this healthy for the parliamentary democracy? Is what I ask tonight.
1: Dr. Seema,
4: leave everything aside. This is not for the BJP to blame. I'm sorry.
1: Everybody is angry with dynasty in the party, including yours. And BJP is sitting there for anger management.
3: See, nobody is angry. If you're talking about my party, I can't listen to you, frankly. But if you're talking about my party, I think there is nobody who is angry with us. All our MPs are with us. they come and regularly meet our big leaders, and they plan the strategies

0: and everything, and there is no resentment in our party. I must say this.
1: But Prithviraj Chauhan is saying that six MPs are very upset.
0: I just want to put my point.
1: Prithviraj Chauhan said that six of your MPs are quite upset, Seema ji.
0: Who?
1: Prithviraj Chauhan.
0: They always say like this. Nobody is upset in our party. I'm talking about my party. Nobody's upset or something. All our MPs are with us. You know, and we are not going to join the NDA or something. These rumors are going on since 12 years.
1: But why are your friendly parties then spreading rumors about you, Seema ji? Prithviraj Chauhan is on your side. Why is he spreading rumors about unrest in your party?
0: TV channels. There is no truth in this. I can't listen to you.
1: Okay, Anand Dubey, let's try and fix Dr. Seema Malik's line, please. हाँ, बताइए आनंद जी.
2: पृथ्वीराज चौहान जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं. उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कुर्सी से हट जाएंगे, बहुत बड़ा भूकंप आएगा, कोई एप्स्टीन फाइल खुलेगी. तो हम लोग बहुत जागरूकता सावधानी से सब देख रहे थे. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है. अब वही पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे हैं कि कुछ एमपी अस्वस्थ हैं, भाग जाएंगे. फिर हम सावधानी से देख रहे हैं, फिर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. ये राजनीति में बोलना कहना ये सब चलता है. हम लोग राजनीतिक जीव हैं, हम लोग बिना बोले रह नहीं सकते. सिद्धार्थ यादव जी की पार्टी देखो कितने प्यार से हमारे झगड़े को देखती है. शरद पवार जी की पार्टी, शिवसेना आपस में नोकझोंक कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी सिद्धार्थ यादव जी करेंगे. क्यों? नजर बनाए हुए, आपदा में अवसर. ये मछली पकड़ने वाले हैं, हम मछलियां हैं. इनके कांटे में आ गए तो पकड़ लेंगे, नहीं आए तो मुंह बना के चले जाएंगे. ये सब राजनीति में चलता है और हमें ये स्वाभाविक
1: लगता है. तो आपकी मछलियां इनके डाले हुए दाने की तरफ जाती क्यों हैं भाई? अपनी मछली को आप अपने तालाब में रखिए ना.
2: अब मछलियां हैं वो चली जाती हैं, क्या करूं मैं? मछलियों को इतना समझा पाते तो बीजेपी को नहीं समझा लेते.
1: देखिए आनंद दुबे जी, ही इज बिकम फिलोसॉफिकल सिंस 2024. ही इज बिकम मोर फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन. इज लाइक होता है, जो होता है उसको हम रोक नहीं सकते. मछलियां हैं, मछलियों का तो नेचर ही है कि वो दाने की तरफ जाएंगी. और आप वहां बैठे होते हैं सिद्धार्थ यादव, देखिए. और जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, एट द एंड ऑफ द डे सिद्धार्थ यादव डजंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट द एनसीपी और शिवसेना. हिज ओनली क्वेश्चन इज वेयर इज राहुल गांधी, बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व बाय राहुल गांधी. सिद्धार्थ यादव
3: नहीं, पद्मजा, अब आनंद दुबे जी खुद कौन सी वाली मछली है उनको पहले क्लियर करना चाहिए. बट व्हेन यू डोंट हैव एनी सक्सेस इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो फिलोसफी निकल कर आती है, उनकी भी वही निकल के आ रही है. बट आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज ही सेइंग अबाउट पृथ्वीराज चौहान? अब ये अलायंस पार्टनर है उनके, एंड देन पीपल एक्सपेक्ट कि इनको सीरियसली लिया जाए. कौन लेगा इनको सीरियसली? इनके अलायंस को कौन सीरियसली लेगा? वॉट इज लेफ्ट इन देम That actually को जो substance किसी देश के नागरिक को लगेगा, क्या लगेगा इनको देख करके? All of them they say that we are an alliance, we are working together, and you give them a moment and आनंद दुबे जी will destroy all of them. अभी आप इनको थोड़ा सा मौका दीजिए, राहुल गांधी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, मेरे को नहीं कहना पड़ेगा. Because the substance of the matter is all these parties have come together.
2: आदमी सीरियसनेस वहां रहेगा ना जहां उसको सीरियसनेस रखा जाएगा. इतनी बार इन्होंने हमारा ऑपरेशन किया, किडनी लीवर तक निकाल लिया है पार्टी के. अभी सुन रहे हैं कि ऑपरेशन 3 होने वाला है, ऑपरेशन 4 होने वाला है, ऑपरेशन 5 होने वाला है. एक तरफ क्या होता था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति होते थे, वो कहते थे चिमटे से नहीं
3: छूंगा.
2: आज वाली बीजेपी कहती है चिमटा तो छोड़िए, पूरा कुकर ही ले लूंगा. तो ये बीजेपी बदल गई. जब बीजेपी बदल गई, मछली पकड़ने वाले बदल गए, फिर मछलियां भी बदल गई, फिर चारे भी बदल गए. क्या करें, हम लोग बेचारे हो गए. आज लोकतंत्र में जो अच्छा आदमी आनंद दुबे जैसा नहीं जी सकता.
3: अरे आप
2: तो नहीं आगे बढ़ सकता.
3: नहीं मान रहे, मछली मारने लग गए,
2: नहीं जा सकते हम आगे.
3: कैसे भला होगा?
2: हमारे पास साधन.
3: आप नेता हैं कि मछली हैं?
2: हमारे पास शक्तियां नहीं है,
3: आप मछली हैं.
2: अरे क्या, मछली तो भगवान के अवतार होते हैं, मत्स्य अवतार.
3: छोड़िए शक्तियों को और संसाधनों को. हमने 50 साल विपक्ष में काम किया
2: है. मत करिए ऐसा, मछली देवता का तो अपमान मत करिए.
3: हम तो नेता ही थे, जनसेवक थे. आप मछली बन गए 10 साल के अंदर ही. क्यों बने?
2: आपने हमें, आपने कांटा डाल डाल के फंसा लिया है. क्यों करते हो? हमें तैरने दो, हम जल में जीना चाहते हैं.
3: कांटा तो
2: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. आग लगाओगे डर जाएगी, आप बाहर निकालोगे मर जाएगी.
3: कोई दाना नहीं चाहिए, कोई कांटा नहीं चाहिए.
2: आप ऑपरेशन बंद कर दो, भारत की राजनीति.
1: ऑन अ सीरियस नोट, टू थिंग्स. वन, देवेंद्र फडणवीस, एंड आई वेरी रेयरली हर्ड हिम बी सो अनइक्विवोकल अबाउट समथिंग. ही सेड नोबडी फ्रॉम एनसीपी

0: Pawar is going to be joining us. We have not reached out to anyone. We don't want anyone from NCP Sharad Pawar to join our party. But despite that, and I want you to listen in to what Rohit Pawar said. वैसे आप बार-बार मछली कह रहे हैं ना, आपके मछली बनते ही BJP कहीं अर्जुन ना बन जाए कि बिल्कुल मछली की आंख में अपना वो तीर मारने के लिए तैयार हो जाए. But okay, let's listen in to what Rohit Pawar said.
1: लेकिन definitely दिल्ली से या महाराष्ट्र से हमारे जो सांसद है, MPs है, उनको कांटेक्ट हो सकता है या हो गया होगा. लेकिन कुछ भी होने के बाद हमारे लोग जब डिलिमिटेशन कायदा का मतदान होगा तब वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और वो डिलिमिटेशन कायदा के खिलाफ वहाँ पे वोटिंग करेंगे. ऐसे कोई भी आपको केस नहीं दिखेगा जहाँ पे वो एब्सेंट है या नेगेटिव वोटिंग वो डिलिमिटेशन के बारे में, मतलब डिलिमिटेशन के फेवर में कोई वोट करने वाला आपको हमारा MP वहाँ पे नहीं दिखेगा.
0: ओके, सो वरुण सिंह very clearly, at least Rohit Pawar is indicating this is not just a storm in a teacup. People have been contacted.
2: You know, to be very honest, let me tell you, there's a very famous saying in Maharashtra that whatever Sharad Pawar says, he doesn't do, and what he does, he never says. So whatever it is being said, so for example, if Rohit Pawar says that his MP won't vote, it may change tomorrow because Sharad Pawar is known for, you know, saying and doing something else. And let me be very clear. No, I'm just like, you know, Anand Dubey has accepted defeat to an extent that he and his party cannot overcome the simple fact that they were the same party. For example, Sachin Iyer. Sachin Iyer was an NCP MLA. He jumped to them. And they, at that time, those people who come into them are honest and they are not called at that. And Mr. Yadav keeps on saying that everyone in other party are unhappy. 8 seconds, yesterday they declared the list, or today they declared the list of 3 MPs from West Bengal. Hmm. All the 3 MPs on BJP ticket are non-BJP leaders who jumped the ship just few days ago. Aren't people in the BJP unhappy with that? So every political party, to be very honest, while they might be taking in leaders from other party and awarding them, that is what the same scenario is happening in across all the political parties. I don't see any political party any different from other political parties who are not poaching onto leaders from other political parties.
0: Okay.
2: And what we just saw in Bihar right now, just a moment. We just saw in Bihar, candidate who was given a candidature, he's taking it back based on saying that his family, I'm sorry. This also goes on to show that Bankipura, one of the most important seats from when Nitin Naveen was the candidate earlier, was an MLA earlier, when they had to select a candidate, it goes on to show multiple things. You know, I don't know, I'm not a politician to say this, but when I read it as a student of politics, it comes to me as if like the BJP at this moment, at this stage, appears a bit ill-prepared when it comes to smaller elections or elections as such.
0: Okay, and I will give the final word on that to Siddharth Yadav. Siddharth Yadav, it's great to have problem of plenty as long as it doesn't tip over into chaos, which is what Varun Singh is warning you about. It may just end up being chaos. Sabko aap le to lenge, karenge kya unka?
3: But Padmaja, I could not understand the extension of the argument to Bankipur, because the candidate which is fielded in Bankipur is a long time BJP worker who has worked from mandal level, booth level in Yuva Morcha, long time. We are one party who always respects its own cadre. We are one party who can get a Rashtriya Adhyaksh from
0: who's been a serving MLA. First you gave the ticket to one person and then you changed him within 3 days. Why?
3: And that's a party decision. Padmaja, one has to understand that we are a cadre-based party. We take decisions based on our cadre. The cadre elects who the candidate should be. The cadre elects who the leader should be. Isme matlab isme abhi ko bahar wala to nahi aaya.
0: Sir, Abhishek Sinha bhi aapka cadre hi tha na. Abhishek Sinha bhi ABVP se hi uth karke aaye the. Abhishek Sinha kaun sa NCP se aaye the?
3: नहीं तो हमारे कार्डर में से हमको चुनना है ना पद्मजा, तो हम डिसाइड करेंगे कौन होगा. कार्डर में तो बहुत लोग हैं, इतना तो द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज एब्सोल्युटली नॉट कि इतने सारे लोग हैं तो अब सबको चुनाव लड़ाना पड़ेगा, नहीं तो लोग दुखी हो जाएंगे. बिकॉज पीपल हु वर्क इन बीजेपी वर्क विद द इंटेंशन ऑफ सर्विंग द नेशन.
0: आई सस्पेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू वी शुड बी डूइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, बिकॉज देयर आर मेनी मेनी लेयर्स टू व्हाट इज हैपनिंग. बट when it comes to the defections we are seeing across states, some possible defections. Again, tomorrow, you have Charanjit Singh Channi in Punjab, who has asked for a meeting with the state in charge, Bhupesh Baghel. There is discontent, discord in the opposition, but is the BJP also inviting trouble by effecting so many crossovers? We'll have that discussion at greater length. For the time being, thank you very much, all gentlemen and ma'am, for joining us on Debate One. Moving on now to the storm over the film Satluj, which is only growing bigger with every passing day. The film, which was taken off OTT platforms, is now being screened across villages. In fact, the Akali Dal and other groups are also organizing these screenings inside Gurudwaras. The problem is now, what does one do with this film? Has this ended up exacerbating some of the divisions that existed in the state along sectarian lines for a good two decades? Punjab is back to normal, but is someone now trying to reignite those fires? The entire country is now talking about Satluj, but where does this controversy go from here? Joining us is somebody who's been very vocal and very upfront, somebody who in fact has personally suffered the blowback of what the state of Punjab witnessed in the 80s and the 90s. MOS Railways, Ravneet Singh Bittu is joining us. Ravneet ji, sabse pehle ye bataiye ki aapne bahut strongly bola hai against Diljit Dosanjh. Aap unse naraaz kyun hain? Wo to keh rahe hain ki hak hai na hame picture banane ka. Aap unse itna gussa kyun hain? Aap unko imposter fraud kyun bula rahe
4: hain? Nahi, pehle to aapka shukriya aapne, kyunki jo isse affected hain unka jo viewpoint aana zaruri hai. Thank you for that. Main Diljit से ज्यादा या कम उनसे कम गुस्सा है, पर ज्यादा जो, क्योंकि जो हनी त्रिहेन है वो भी पंजाब के हैं जिन्होंने बनाई है और अमृतसर से हैं. मैं सबसे पहले, क्योंकि रिकॉर्ड और फैक्ट्स हमेशा, और आपका नेशनल इंटरनेशनल चैनल है उसके ऊपर फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं वो, और इसको मैं चैलेंज करूंगा. और अगर कहीं भी मेरे फैक्ट गलत होंगे तो मैं अपॉलॉजी करूंगा आपके सामने, और मैं माफी मांगूंगा भी मैंने ये फैक्ट्स आपको गलत दिए थे. मैं कहीं भी नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर भी सारा डाटा है जहां से ये पैसा मिलता है, या और अगर कहीं भी 25,000 जो इन्होंने अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की बात की है, अगर वो डाटा सच है तो मैं पहले तो चैलेंज करता हूं भी वो 25,000 जो डाटा फैब्रिकेट किया है उसको, उसकी लिस्ट आपके सामने दिखाएं, देश के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, और जो इनकी बातें कर रहे हैं उनके सामने रखे. 25,000 तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं 5,000 का डाटा ही, उससे नीचे भी मैं बाद में बताऊंगा, 5,000 का भी कोई डाटा इनके पास है तो ये मीडिया में रखें, अपने कमीशन के आगे रखें, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रखें. ये बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट में डाटा नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर कमीशन. सेकंड, दलजीत दोसांझ, और ये जो है इन्होंने गुस्से की बात है, हर पिक्चर बनाता है ठीक है, अरे भाई सेंसर बोर्ड है, आप उसके थ्रू आ रहे हो, आप कोर्ट्स में गए हुए, आप एक ओवर द टॉप जो उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपने पिक्चर डाली, और वहां से बाहर बैठ के विदेश में, यहां कोई नहीं है ना इंडिया से इनको लेना देना है, अब्रॉड बैठ के ये कह रहे हैं भी इसे जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए. मैंने भी वो सुना है, देखा है, और ये साथ में कहा पद्मनाथ जी भाई दो दिन के अंदर अंदर ये पिक्चर जो है इसे कोई ना कोई, मतलब सीधा उनका बात था भी इंडियन स्टेट या एजेंसी से इसे उतार देंगी. वो क्यों ये उन्होंने पहले ही बात की, क्योंकि उनके मन में क्या शक था, क्या चोर था. और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कहने वालों को भी पता है, सेंसर चैनल्स के ऊपर है, सिनेमा के ऊपर है, लेकिन ओटीटी पे ओवर द टॉप जो कोई भी किसी तरीके का वहां पे गवर्नमेंट का, जो बीजेपी को ये कह रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं. वहां पे इन्होंने 199 की ये पिक्चर को सेल किया, साथ में जी वालों ने, जो Z5 वाले हैं पता नहीं उसमें क्या वो अपनी बात रखेंगे, पर उन्होंने साथ में ही 495 500 के बीच में ये पैकेज रखा

0: बनाई भी ये पता तो लगे भी कैसे पिक्चर डली, कहां से हट गई, इसके ऊपर उन्होंने उल्टा इंक्वायरी बात की है। पर
1: दिलजीत दोसांझ हैज सेड दैट लुक दे साइलेंस अस इन 1995, दे आर ट्राइंग टू साइलेंस अस इन 2026 एंड द ट्रूथ मस्ट गेट आउट दैट यू हैव मिस्टर खालड़ा हु वाज एन एक्टिविस्ट हु वाज killed in this brutal fashion only because he was highlighting these enforced disappearances, and the government of India is trying to silence us even today like they did in 1995. To wo haq ki awaaz utha rahe hain.
0: Agreed. Bilkul Khalra ji ki picture banayi dikhayi. Ab meri ek request hai unse, Haneet Rehan ji se bhi, aur bade bade jo director hain, Kashmir files bani, Kerala file bani, aur ab iske upar Punjab ke liye bhi meri request hai unse. मैं ये नहीं कहता कोई मेरा उनसे मेरा हक है, जैसे उन्होंने ये बनाई एक फिल्म, एज ए इंडियन भारतीय होने के नाते उनकी दूसरी ड्यूटी भी बनती है भी यहां जो इसके कारण एक बैकलैश, एक यंगस्टर्स में गुस्सा आ गया वन साइडेड दिखा के, एक पिक्चर वैसे होती तो आपने इसको रियलिटी कह के बनाया है भी ये रियलिटी है। अब मैं आपके सामने रखूंगा भी इसके ऊपर भी वो जरूर पिक्चर बनाए, ये कोई वैसे ही मैंने छापे हुए अखबार नहीं है, ये 125 पैसेंजर्स मैसेकर्ड, ये जो लालड़ू के पास पंजाब में हुआ 125 लोग, इसके ऊपर भी पिक्चर बनाई। उसके बाद आपको मैं एक और आपको हैरान करने वाली बात है, एक यंग आईपीएस ऑफिसर जिनका अविंदर सिंह, ही इज अ गुरसिख गाय, ये एक गुरसिख नए आईपीएस ऑफिसर थे जो पटियाला एनआईएस में, जो अपनी वहां पे मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे एनआईएस में, और ये एसएसपी पटियाला थे, इनकी वाइफ आईएएस ऑफिसर थी, इनकी बेटी एक साल की थी, 3 साल का इनका बेटा था, कभी इनकी फैमिली में पूछा जाके इनका क्या हाल है, कैसे इन्होंने जिंदगी बतीत की, क्यों, क्योंकि ये देश की बात करते थे, नेशनलिस्ट थे और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, इनके ऊपर कभी आपको रहम तरस नहीं आया। इनकी दाढ़ी भी वैसी है, इनकी भी पगड़ी वैसी है, ये सिर्फ आईपीएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, इसलिए आपने पिक्चर किनकी बनाई, इन लोगों की, ये सच्चाई है, आपने पिक्चर बनाई इन लोगों की। खालड़ा साहब मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छा काम किया, पर इनकी आइडेंटिफाई क्यों की बॉडीज के लिए, जो AK-47 डालते थे, ये इनकी इनकी आइडेंटिफिकेशन ही क्यों की, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों की, और आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद ये बस मैसेकर टोल 40, ये बटाला में, ये बटाला में 40 पीपल, उनके परिवार में कभी देखा भी उनकी विधवा का क्या हाल है, उनकी मां का क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है, नहीं। उसके बाद ये एक अमृतसर के गांव में, मैं मतलब कितनी इनकी किसी को याद तरस नहीं आया, इनकी कभी इनको याद नहीं आई भी किस तरीके ये लोग मारे गए, इनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनेगी। चंडीगढ़ में रामलीला में किस तरीके से आके मार दिया गया, किसी को कोई इनका फिक्र नहीं है। तो ये लोग, और इन्होंने एक और फैक्ट मैं बाकी बात करूंगा, ये इन्होंने बोला है भी विटनेस इन खालड़ा मर्डर हु हैड बीन टर्न्ड हॉस्टाइल अलाइव।
1: क्योंकि आपने उस पिक्चर की बात की, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हमने एक सब्जेक्ट बनाया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई सोच समझ के कोई वन साइडेड ही दिखाया है, वी शोड एवरीथिंग दैट जसवंत सिंह खालड़ा वॉज डूइंग, आपको ये सब अगर मैसेकर्स दिखाने हैं आप पिक्चर बना लीजिए, हमारी पिक्चर मत रोकिए।
0: नहीं नहीं, हमने कहां रोकी, पिक्चर तो उन्होंने जो आग लगाने की कोशिश उन्होंने की, और बोला क्या,
1: आप कह रहे हैं जानबूझकर को रिलीज किया गया आग लगाने के लिए, कौन आग लगाना चाहता,
0: बिल्कुल बिल्कुल वन साइड देखो, फिर दूसरी साइड क्यों नहीं दिखाई। एक एक मैं कह रहा हूं बिल्कुल, जिन पुलिस वालों ने गलत काम किए, आई थिंक मोर देन 127 केसेस हैं जो सीबीआई ने, वो भी तो इंडियन एजेंसीज हैं जिन्होंने टेकअप किया, और आप हद ये है, आप में मेरे ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी उसमें आप दिखा रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर 31

0: फर्स्ट ऑफ अगस्त 31 अगस्त को उनका असैसिनेशन हो जाता है और उस टाइम तक खालरा साहब जसवंत सिंह खालरा जी को कभी पुलिस ने कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कभी उनको उठाया नहीं गया जब पीक ऑफ टेररिज्म था। मेरे ग्रैंडफादर 31 अगस्त को वो उनका असैसिनेशन हो जाता है, 6 सितंबर को जो कोर्ट किया है उनको पुलिस ने उठाया और अक्टूबर में जाके वो उसमें पिक्चर में बताया गया है भी उनको मार दिया गया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कौन से मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, ये देखना किसका काम है? आप बात एकदम हर चीज उसमें फैक्ट के बाहर। और जो दिलावर सिंह दिखाया ह्यूमन बम, उसकी बात की जोड़ी गई है, क्यों ये फैक्ट इतने बड़े गलत दिखाए, वो तो मेरे ग्रैंडफादर से संबंधित है। जो दिलावर सिंह था वो एक अलग एसपीओ था, उसका कोई भाई नहीं मारा गया था, कोई उसका गांव ने जसवंत सिंह खालरा से नहीं जुड़ा हुआ था, वो तो अलग एक चीज थी, उसको उससे जोड़ दिया गया भी उसने वहां पे ये किलिंग देखी और आके वो ह्यूमन बम बन गया। और जो उन्होंने कहा है इसका ये जिंदा आदमी है, इसका नाम उन्होंने अलग पिक्चर में कुछ रखा है, जो उनको खाना खिलाया था जिसने भी, उसको भी मार दिया गया, पिक्चर में दिखाया गया है केएल सिंह।
1: क्योंकि आपने अपने दादाजी की बात की है, ऑन अ पर्सनल नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत से लोगों ने इस पर एतराज भी किया है दैट देयर इज ऑलमोस्ट ग्लोरिफाइंग म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड व्हेन द असैसिनेशन ऑफ सरदार बेअंत सिंह जी इज शोन देयर। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट ऑन अ पर्सनल नोट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज यू नो समबडी हु इज इन द बीजेपी अ मिनिस्टर, बट एज अ ग्रैंडसन, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सीन?
0: देखो बंदना जी, कई बार बहुत बहुत अफसोस होता है, दुख होता है, हम लोगों ने तो सब कुछ इस देश के लिए खोया और एक ही चीफ मिनिस्टर है जिसने जम्मू कश्मीर में बहुत हालात ऐसे रहे, गवर्नरी रूल रहा, वहां पे फौज लगी, यहां पे सरदार बेअंत सिंह जी लोगों के इलेक्टेड होके लोगों ने चुना, उन्होंने जो यहां पे किसी की बरात नहीं चढ़ती थी पंजाब में, अगर कोई बरात लेके जाता था घोड़े पे उसे उसके साथ उसी गांव के जो पौंड छप्पड़ बोलते हैं उसे उसमें वहां पे उसका मुंह काला किया जाता था। और कोई मेरी बहन, आप इस पे प्रोग्राम जरूर करना, उस टाइम के पुराने रिपोर्टर्स आपके सामने होंगे, जो मेरी बहन मेरी बेटी अगर वो अपनी मर्जी से सूट डाल लेती थी, जीन्स डाल लेती थी, अगर वो दो गुत्ते पीछे नहीं करती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, स्कर्ट या ये तो बहुत ही दूर, सिर्फ एक ड्रेस थी हर स्कूल में पंजाब और चंडीगढ़ में, वाइट कुर्ता और साथ में ब्लैक कलर की सलवार और केसरी चुन्नी, तालिबान का राज था यहां पे। आज वो चीजें बदल गई। मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आ गई 95 को और आप आज अंदाजा लगा लीजिए 36 और प्लस 31, उसके बाद जो जनरेशन पैदा हुई है उसके मन में क्या आएगा? इन्होंने इस आग को जन्म दिया है। और यहां पे कोई ये पिक्चरों की बात करता है, मैं दिलजीत दोसांझ से पूछना चाहता हूं और हनी त्रेन से ही पूछना चाहता हूं भी, कोई उस टाइम पंजाब में थिएटर में कोई पिक्चर लगती थी? कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट क्या पंजाब में खुला अखाड़ा, मतलब जैसे गुरदास मान गाते हैं जा कॉन्सर्ट, मैं शर्तीय कहता हूं भी, अगर कोई 80 से 92 पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री, मेरे ग्रैंडफादर ने धर्मिंदर अमरीश पुरी जितने लोग से, तमस्सम, ये लोग जो पंजाब से जुड़े हुए थे, कोई पंजाब में पिक्चर नहीं, जो सबसे बड़ा हमारा धर्मेंद्र के कजन थे वरिंदर, उनको शूट किया गया। और जिन्होंने प्रणीति जो एक हमारी एक्ट्रेस है, जिन्होंने एक चमकीला नाम की पिक्चर बनी जिसमें इन्होंने ही काम किया है, दिलजीत दोसांझ ने चमकीला, वो सबसे जिसने गंदे गाने गाए हैं, मैं कह नहीं सकता लेडीज के, हमारी बहनों के लिए, उसको भी उस टाइम उसने गाने गाए, वो माना नहीं क्योंकि बाकी सब रोके हुए थे, चमकीला ने और अमरजीत कौर ने एक दो कैसेट निकाली, उनको दिन में दोनों को मारा गया, टेररिस्टों ने मारा, और उनकी बॉडी लेने भी कोई फैमिली वाला नहीं आया, वो भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी सी थी। तो उसके ऊपर दलजीत ने पिक्चर बनाई, पर उसमें दलजीत ने ये नहीं दिखाया, चमकीला और प्रनीति ने ये नहीं दिखाया भी दोनों को किसने मारा। उसके ऊपर भी सच्चाई दिखाते ना भी चमकीला की, मैंने उसमें पैसे बना लिए क्योंकि उसमें 84 में पैसे बना लिए और बातें थी, इनके लिए सिर्फ इनकम है। और यहां मैं कह रहा हूं भी, मैं इसमें चैलेंज करता हूं जो आपके चैनल पे सुनेगा, अगर पंजाब में, और हमारे पे गुस्सा क्यों भाई, गुस्सा करना है तो लोगो कांग्रेस पे करो, जिस कांग्रेस ने, जिस इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने गोल्डन टेंपल पे अटैक किया, हमारे गुरुद्वारे ढाए, 84 में 84 जो हर जगह सिखों को मारा गया, हर देश के कोने कोने में मारा गया, उस चीज को आग लगी हुई थी, जो मेरे ग्रैंडफादर ने तो वो आग आके ठीक करी, उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने आके उसे ठीक किया और अपनी शहादत दे दी। उसके बाद पंजाब आज खुशहाल है, पंजाब आज तरक्की कर रहा है, पर आज फिर मैं इसलिए तड़फ रहा हूं भी, आज फिर 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं, 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं, ये और ड्रग्स के में।
1: तो आप कह रहे हैं कि ये दोबारा इसको एक तरीके से, फाइनली द वे पीस हैज रिटर्न टू पंजाब, उसको दोबारा एक तरीके से, देयर इज एन एफर्ट टू ट्राई एंड पुल इट बैक इनटू द पास्ट, बट हाउ डू यू स्टॉप इट रवनीत सिंह बिट्टू, हाउ डू यू स्टॉप इट, बिकॉज इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज बीन पुल्ड आउट, इट्स बीइंग स्क्रीन्ड इन गुरुद्वारास, द एसजीपीसी टुक आउट अ मार्च टुडे, दे आर होल्डिंग स्क्रीनिंग्स इन विलेजेस, इन गुरुद्वारास, देर आर एलईडी ट्रक्स विच आर यू नो ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस द विलेजेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान। अब तो ये रुक नहीं सकती ना, कहीं इस बैन लगा के गलती तो नहीं कर दी, अब आप एसजीपीसी
0: में कैसे रुकेंगे? मैं यही कह रहा हूं भी, बैन लगा ही नहीं, ये प्रोपेगंडा है, ओटीटी के ऊपर उन्होंने पिक्चर डाली, खुद डाल के खुद उतार ली, इसमें गवर्नमेंट का, बीजेपी का, मैं एक मिनिस्टर होने के नाते कह सकता हूं बिल्कुल कोई रोल नहीं है।
1: ये तो आईटी मिनिस्टर के कहने पे हटाया गया है, आईटी मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर इट टू बी पुल्ड आउट,
0: इसके ऊपर इंक्वायरी है जो वो मिनिस्ट्री ने करी है, बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं, बीजेपी तो यहां पंजाब में ना, यहां गवर्नमेंट में थी ऊपर, ना सेंटर में गवर्नमेंट थी, वो तो कांग्रेस है, उसे जवाब देना चाहिए भाई, ये हालात क्यों बनाए उस टाइम, क्यों सिखों के साथ ये हुआ। और अकाली दल जो कर रहा है, अकाली दल के लिए जो मेरे रिस्पेक्टेड मिसेज वाइफ ऑफ खालड़ा जी, उन्होंने आके सीधा, आप उसको भी दिखा सकते हैं, बहुत चैनलों पर चला है, उन्होंने सीधा कहा कि 97 में हमें लगा था भी प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि वो अकाली दल के एक्टिविस्ट थे, अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी थे खालड़ा साहब, भाई बादल साहब को जब वो 97 में सीएम बने, सारी फैमिली गई, हमने जाके कहा भी अब खालड़ा साहब के केस के बारे में देखिए, उन्हें ढूंढिए, क्योंकि उस तक उस टाइम तक उन्हें पता नहीं था भी उन्हें मार दिया गया है। तो बादल साहब ने, अकाली दल ने जो ये ढोंग रचा है, उन्होंने कहा बीबा जी आप मिनिस्ट्री ले लीजिए, चेयरमैन ही ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, बट खालड़ा साहब की बात मत कीजिए, ये उनकी वाइफ ने। और मैं एक और बात कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं उनके वाइफ रिस्पेक्टेड खालड़ा साहब के पे, मैं उनको जरूर मिलूं, उनके पास बैठूं, भाई जाने किसकी गई है, परिवार आपका मेरा और बाकी जो सारे हिंदू ऑफिसर पुलिस वाले और पंजाब भी सिख, और आज उसके ऊपर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, जब वो जिंदा थे उनको आज तक जो कौमी शहीद, जो एसजीपीसी फोटोज लगाती हैं दरबार साहब के साथ म्यूजियम में, कौमी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, चार बार उन्हें इलेक्शन लड़ाई गई, मिसेस खालड़ा को चार बार पार्लियामेंट और विधानसभा किसी ने मदनदी की, उनकी जमानतें जब्त हो गई, तो हम कोशिश करेंगे
1: उनका इस तरीके से पॉलिटिकल उनको वेपनाइज किया जा रहा है,
0: वेपनाइज किया, और मैं कोशिश करूंगा जब वो बाहर से आए हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे, जिन्होंने दुख जे झेला है उस पंजाब की लड़ाई में, हम इकट्ठे बैठ के ये जो पॉलिटिक्स करते हैं उनका मुंह बंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी।
1: पर ये बताइए कि जब आपकी, आपका एक स्टेटमेंट है उसको बहुत एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, जब आपने कहा था कि भाई अगर आपको जसवंत खालड़ा जी पे बनानी है, पिक्चर बनानी है, अगर आपको ये पिक्चर बनानी है कि कैसे जो इनोसेंट सिख थे उनके ऊपर अत्याचार किया पुलिस ने, तो आप दिलवान बस मैसेकर पे भी बनाइए, आप लालड़ू बस मैसेकर पे भी बनाइए, आप फतेहाबाद बस किलिंग पे भी बनाइए। तो ये एक तरीके से माहौल खराब कर रहा है, क्योंकि फिर से उस वक्त जो एक खाई थी या जो एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई थी सिखों और हिंदुओं के बीच में, उसको एक बार दोबारा, दोज क्रैक्स आर गोइंग टू बी रिवाइव्ड एंड दैट्स वेरी डेंजरस, इट्स प्लेइंग विद फायर।
0: नहीं पद्मिता जी, बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुओं की बात अकेले नहीं कर रहा, हिंदू तो बेचारे मैं हम बैठे हैं हमारे जैसे लोग हिंदुओं को बिल्कुल उनकी रक्षा करने के लिए, मेरे दादाजी, हिंदुओं की बात नहीं है अकेली। जो ये मैंने आपको दिखाया, ये कौन, ये एसपी साथ में केपीएस गिल की किलिंग हुई, और ये कौन कह सकता है भी ये अकेले, 22 डीएसपी मरे, और मैं अगले दिनों में आपके चैनल पे भी भेजूंगा, और मैं हर सिख के घर ही जाऊंगा जो किलिंग हुई है, हिंदू के घर नहीं जाऊंगा, ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन जो हर सिख मरा है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था पिछले लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ही 136 जो टेररिस्ट ने किलिंग की है अकेले लुधियाना में, वो सिख फैमिलीज हैं, हिंदू और यहां ये लड़ाई नहीं थी, ये तो दिखाई जाती है। ये बस में उतार के जो मारे वो अकेले हिंदू थोड़ी थे, वो सिख हैं, उसमें भी पंजाबी हैं, एससी हैं। ये कोई अगर गलत बात करे, ये जलंधर स्टेशन पे ब्लास्ट हो गया, इसमें किसको पता था कौन सिख है? ब्लास्ट में कोई आइडेंटिफाई कर सकता है भी सिख है या स्टेशन पे? अभी जहां प्रधानमंत्री जी आएंगे
1: जी।
0: हम उसे जलंधर स्टेशन में उसे बना रहे हैं, स्टेशन पे रेलवे ब्लास्ट हो, इसमें कौन पता, कोई बिहारी था, कोई यूपी वाला था, कोई पंजाब वाला था, किसको पता है?
1: मेरे को ये बताइए कि दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड मेनी पीपल वर्क टू फाइनली गेट पंजाब टू वेयर इट इज टुडे, योर दादाजी वाज वन ऑफ देम, केपीएस गिल वाज सिख,
0: वो कोई हिंदू थे, वो तो सिख थे,
1: केपीएस
0: गिल कोई हिंदू था?
1: करेक्ट, केपीएस गिल के ऊपर भी अब बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, हाउ डू यू एनालाइज हिज लेगेसी, फॉर यू इज केपीएस गिल a butcher in khaki or a hero who got rid of militancy in Punjab? How do you evaluate his
0: legacy? Padma ji, main is baat ka aaj KPS Gill jo the, wo Assam cadre ke officer the, Assam se yahan aaye gaye, laaye gaye, kyunki Punjab mein DGP Revero rahe, unhone bahut kaam kiya, par KPS Gill chale gaye, पहले कामयाब नहीं हुए, फिर दूसरी बार फिर आए, सेकंड टर्म उनको दी गई, बिल्कुल केपीएस गिल जहां ये वो पहले भी थे, रिवेरो साहब उससे भी मजबूत थे, ये मारने से काम नहीं होता, अकेला भी गोलियां मार दी काम हो गया, नहीं, गवर्नरी रूल था, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने गवर्नरी रूल लगा के, मिलिट्री लगा के, कांग्रेस ने फौज लगा के देख लिया था, मार मार के, मारने से नहीं होता। जब सरदार बेअंत सिंह आए, उन्होंने पंचायत इलेक्शन करवाई, उन्होंने काउंसलर की इलेक्शन करवाई, उन्होंने नौजवानों को सिनेमा दिया, गाने वाले दिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाए, नौकरियां दी, इंडस्ट्री लेके आए, इंडस्ट्री वालों को प्लॉट दिए, अभी और इंडस्ट्री लगाओ, तो ये सारी चीजें हुई, ये पुड्डा जैसे नई नई मिनिस्ट्रीज बनी, ये अकेला मारने से नहीं हुआ। आप सोचो भी मारने से खत्म हो गए, नहीं, आप जरूर पंजाब आइए, यहां देखिए और स्टोरीज कीजिए भी किस तरीके से सरदार बेअंत सिंह और सारी पार्टी, चाहे वो कॉमरेड था कोई, चाहे बीजेपी वाला था, चाहे कोई अकाली दल वाला था, सबने मिलके काम किया। आज पॉलिटिकल और चीज है, आज और रोटियां सेकना चाहते हैं इसलिए ये चीजें हो रही हैं, नहीं, सब पार्टियों ने इकट्ठे होकर यहां लड़ाई लड़ी है।
1: थैंक यू वेरी मच रवनीत जी, थैंक यू।
2: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid, what will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead. The NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026 on 15 July, only on NDTV Network.
3: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
4: When markets close, clarity matters as much as speed.
3: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
4: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
3: join us before every closing bell
4: on India Market Close.

0: Today, when the NCP-SP chief walked into the assembly for a meeting on the Maharashtra-Karnataka border issue, Shinde reportedly cut short a cabinet meeting and welcomed a veteran with a bouquet, spent 15 minutes with him in his office, and then here's where it gets curious. Pawar stayed back and held a meeting of his own party legislators. The timing of the meeting drew sharp reactions from ally Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut, who asked, why did Pawar pick a traitor's chamber? Here are some reactions that are coming in on the top political developments that are creating buzz in the state of Maharashtra.
1: नाराज कल से आज नहीं पवार साहब हमारे सुप्रीम लीडर है महाविकास आघाड़ी के हमारे नेता है कल हमारी भावना थी हमने कल उसके बारे में व्यक्त की है नहीं देखिए एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है ये हम मानते हैं जब अजीत पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी ऐसे लोगों को हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता है
2: नहीं मेरी संजय राउत साहब से कल बात हुई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनको कोई गलत खबर किसने दी थी कुछ नहीं
3: अच्छा जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है क्या वास्तविकता है
2: कौन कह रहा है भैया ये सब टीवी पे ही चल रहा है एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद 8 सांसद हम है जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे
4: भाई शरद पवार जी विधानसभा भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे क्या हुआ था वो इस वक्त में
2: नहीं नहीं कोई नहीं सब मिस कमी है स्टॉम इन अ टी कप
3: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की बोले शरद पवार जी ने
2: किसने बोला आपको एक मिनट भी नहीं मिला वो बेचारे कैबिनेट में थे ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है
5: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में विधानसभा में हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हमारे विचार अलग होते हम कड़ा प्रहार करते हाउस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं जो आज नहीं है लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का राज्यसभा का और उस समय एक अलग वातावरण था एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी हाँ एक बात जरूर है पवार साहब बहुत बड़े नेता है वो किसे मिले क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी या तो स्वाभाविक था क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे उसे जाके मिलोगे तो उनको ठेस तो लगेगी तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ
0: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: गलत खबर किसने दी थी? कुछ नहीं।
1: अच्छा, जिस तरह से आपके सांसद अलग पार्टी में जाने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता है?
0: कौन कह रहा है भैया, ये सब टीवी पे ही चल रहा है। एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद, 8 सांसद हम हैं, जो करेंगे वो साथ ही में करेंगे।
2: भाई शरद पवार जी विधानसभा भवन में बहुत दिनों के बाद गए थे, क्या हुआ था वो इस वक्त में?
0: नहीं कोई नहीं, सब मिस कम्युनिकेशन है, स्टॉर्म इन अ टी कप।
1: एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की, बोले शरद पवार जी ने।
0: किसने बोला आपको? 1 मिनट भी नहीं मिला। वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले। छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है।
3: राजनीति में और विशेषतः संसद और विधिमंडल में, विधानसभा में, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। हमारे विचार अलग होते हैं, हम कड़ा प्रहार करते हैं हाउस में, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाउस से बाहर निकल के बाद हम सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे रहते हैं, जो आज नहीं है। लेकिन मैंने तो वाजपेयी सरकार के टाइम केंद्र सरकार में मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस समय एक अलग वातावरण था, एक दूसरे से मिलना में कोई गैर बात नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर है, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, वो किसे मिले, क्या शायद हो सकता है कुछ सलाह देने के लिए मिल रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन इससे शिवसेना यूबीटी को बहुत बड़ी ठेस लगी, या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिवसेना को तहस नहस कर दिया था उसे आप सम्मान दोगे, उसे जाके मिलोगे, तो उनको ठेस तो लगेगी। तो मैं संजय राउत का बयान भी समझ सकता हूँ।
4: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.